मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 3, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: लेकिन प्रेम करने के लिए खुद कोई समय नहीं निकाल पाते। ये दिव्य जनों का सौभाग्य है कि उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मनुष्यता का लक्षण भी यही है। वेदों में कहा गया है, प्रेम भोग से नहीं बल्कि त्याग से प्राप्त होता है। वेद के अनुसार मनुष्य को प्रत्येक कर्म यज्ञ के समान करना चाहिए। दूसरों के लिए अपने स्वार्थ की आहुति देना श्रेष्ठ है। यदि हम अपने सुख को प्रमुखता देते हैं, अपने भोग को ही परम मानते हैं, तो इसका परिणाम द्वेष, दुख और अशांति के रूप में सामने आता है। दूसरी ओर त्याग का परिणाम होता है प्रेम, सुख और शांति। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं सुख है। ये अनुभूत सार है। विद्वानों के अनुसार प्रेम को जान लेना सब कुछ जान लेने के समान है। जो व्यक्ति प्रेम को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यहाँ तक कि उसमें प्रभु को प्राप्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। प्रेम की इस उच्च अवस्था का अनुभव कुछ ऋषियों या महात्माओं ने किया है। यह ऐसा भाव है जो हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होता है और जीवन पर्यंत हमारा साथ निभाता है। प्रेम अनमोल है। यह हमें परिपूर्णता और संतोष प्रदान करता है। जिसके हृदय में प्रेम का निवास है उसके लिए मैं और मेरा जैसे भाव अर्थहीन हो जाते हैं। जब हमें प्रेम का अभाव होता है तभी हमारा मैं जागृत होता है। प्रेम केवल देने और बांटने की वस्तु है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा उचित नहीं। त्याग से जहां मन की शुद्धि होती है वहीं चित्त भी निर्मल होता है। प्रेम, ममता, परोपकार, सहानुभूति, श्रद्धा, ये मानवीय मूल्य भीतर के खोखलेपन को समाप्त कर देते हैं। अपने पराये की संकीर्णता खत्म हो जाती है। मनु ने कहा था, सभी जीवों में अपने को और अपने में सभी जीवों को समान रूप से देखना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, इसे ही आचरण में लाना प्रेम का आधार है। हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं और किसी का बनना चाहते हैं। हमारी प्रेम पाने और प्रेम देने की यह अभिलाषा प्रेम को और आगे बढ़ाती है। प्रेम का अर्थ है उदारता। किसी को हमारी बात से चोट न पहुंचे, कोई अपने को अपराधी अनुभव न करे, हमेशा उदार और शिष्ट बने रहना ही प्यार है। प्रेम मन की एक सहज स्थिति है, कोमल सहृदयता है, जो हमारे आपके आचरण में

0: से दिखाई देने लगती है। प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग का भाव नहीं है, ये सहज सहृदयता स्वातीत भावों को जगाती है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो भी आता है वो वास्तव में प्रेम से भरपूर हृदय के संपर्क में आता है, इसीलिए प्रेम के रस में सहज ही भीग जाता है। प्रेम करुणा से प्रेरित है, इसीलिए सारे दुनिया के लोग वैर विरोध त्याग कर प्रेम भाव और सुख शांति से रहना सीख ले तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। सभी धर्म प्रेम को ईश्वर के बराबर मानते हैं। मन से अहंकार, मोह और दूसरे विकार दूर हो जाने पर हम जिस सहज अवस्था को प्राप्त करते हैं वही प्रेम है। गुरुबानी में कहा गया है, सद्गुरु की कृपा से मनुष्य देवता बन जाते हैं। इसी तरह के देव पुरुष सदा प्रभु प्रेम का रसपान करते हैं। प्रभु जी कण कण में समाये हैं, साधारण आंखें उन्हें नहीं देख पाती, लेकिन प्रभु प्रेम में रंगी आत्मा उनके दर्शन कर लेती है।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक प्रसारण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है अगात फूलगोभी की उन्नत खेती, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं शांतनु कुमार मिश्र।
1: आजुक कृषि चर्चा के संग हम शांतनु कुमार मिश्र। किसान भाई, फूल गोभी के आगात खेती जो आधुनिक पद्धति के द्वारा नीक जना कैल जाए तो बेसी से बेसी उपजा प्राप्त कैल जा सकते है। किसान भाई, खरीफ फूल गोभी के आगात खेती करबा के अखन उपयुक्त समय है। किसान भाई, आगात फूल गोभी के खेती जून जुलाई में एक नर्सरी तैयार कर लेबाक चाही। संगे नीक जल निकासी वाला बलोई दोमट माटि में आगात फूल गोभी के खेती करबाक चाही। पौध नर्सरी में तैयार भ जाए तकर बाद उखाड़ कर खेत में रोबा के चाही। किसान भाई, आगात फूल गोभी के उन्नतशील प्रभेद में पूसा कतकी, अरली कुवारी, पंत सुभरा अछि जे 60-70 दिन में फसल तैयार भ जाते अछि, संगे नीक उपज दैत अछि। किसान भाई, मध्यम किस्म में पंत सुभरा, पूसा सुभरा, पूसा पूसा स्नोबॉल K1, पूसा अघनी हिसार नंबर 1, पिछेती किस्म में पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2 आ पूसा स्नोबॉल 16 ई उन्नतशील किस्म अछि, एकर खेती करबा के चाही। किसान भाई, बुआई के समय नर्सरी में बीज डालबा के समय जून से जुलाई धरि आ रोपाई जुलाई अगस्त में कैल जा सकते अछि। जलवायु अगेती किस्म के लेल थोड़े अधिक तापमान आ बड़ा दिन के आवश्यकता होइत अछि। बिया दर प्रति एकड़ लगभग 300-400 ग्राम बिया के आवश्यकता होइत अछि। किसान भाई, माटि के चुनाव नीक जल निकासी वाला बलोई दोमट माटि या हल्लुक दोमट माटि जकर पीएच मान 6-7 हुआ ओहन खेत के चुनाव कर एकर खेती करबा के चाही। खेत के 3-4 बेर नीक जना जोताई कर माटि के भुरभुरा बना ली, प्रति एकड़ सरल गोबर के खाद 8-10 टन मिला दी। संगे जोताई कर पाटा लगा कर खेत के समतल केला के बाद में नाला बना ली आ क्यारी बना कर ओकर पौध के रोपबा के चाही। पौध से पौध के दूरी 30-45 सेंटीमीटर आ कतार से कतार के दूरी 60 सेंटीमीटर राखी। 22-25 दिन के बाद स्वस्थ पौध के रोपाई के लेल नीक मानल जाते अछि। 22 दिन के पौध भ जाए तकर बाद एकरा रोपबा के चाही। किसान भाई, खाद उर्वरक में फूल गोभी के नीक पैदावार प्राप्त करबा के लेल खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश होयब अत्यंत आवश्यक अछि। खेत में 20-25 टन सरल गोबर के खाद या कंपोस्ट 3-4 सप्ताह पूर्व नीक जना मिला दी। एकर अतिरिक्त 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में देबा के चाही। नाइट्रोजन के 1/3 मात्रा आ फास्फोरस तथा पोटास के पूरा मात्रा अंतिम जोताई या प्रतिरोपण से पहले खेत में मिला देबा के चाही। संगे शेष आधा नाइट्रोजन के मात्रा 2 बराबर भाग में बांट कर खड़ा फसल में

0: 135 दिन के बाद उपरवेशन करवा के चाही। किसान भाई, पौध नीक वृद्धि के लेल माटि में पर्याप्त मात्रा में नमी के होयब अत्यंत आवश्यक है। सितंबर के बाद 10-15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार पटौनी करते रहबा के चाही। ग्रीष्म ऋतु में 5-7 दिन के अंतर पर पटौनी करते रहबा के चाही। फूल गोभी के तैयार हुआ धरि 2-3 निराई गोराई क खरपतवार नियंत्रण करवा के चाही। बेसी खरपतवार हुआ पर खरपतवार तृणनाशी दवाई के सेहो उपयोग कैल जा सकते है। किसान भाई, पौध थोड़े पैघ भ जाए तो ओहि पर माटि चढ़ेबा के चाही। पौध के चारू तरफ माटि चढ़ेबा के चाही, संगे पानि नहीं हुआ पर पटौनी करत रहबा के चाही। नीक जना खेती करबा पर 120-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होत है। अही के संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं को संबोधित हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था अगात फूलगोभी की उन्नत खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे शांतनु कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

0: पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से, जो एक डायटिशियन है। बातचीत का विषय होगा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। डॉक्टर साहब, संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका?
3: बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसा आहार जिसमें कि हम एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, मतलब जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर भी है। वाटर भी हम बैलेंस डाइट में लेते हैं कि आप पानी कितना पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का अगर मिक्सन जो एक प्रॉपर अमाउंट में अगर कोई ले रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट।
2: तो बैलेंस डाइट में एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसमें कौन कितना फैट है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है?
3: देखिए, इतना तो पता कर पाना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक एवरेज जो एक पर्सन के लिए जो कैलोरी होती है डेली की, वो होता है 2000 किलो कैलोरी। कि अगर कोई एवरेज आदमी है 2000 किलो कैलोरी ले रहा है प्लस 60 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, दैट मीन्स कि ही इज टेकिंग बैलेंस डाइट।
2: तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि एक लेबर क्लास का आदमी जो खेतों में काम करता है उसकी कैलोरी डिमांड ज्यादा होती है। और जो कार्यालय में ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के काम करता
3: है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे जो कार्यालय में बैठे हैं, जो सिटिंग है जिनका, उनका जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन जो सेडेंटरी है, मान लीजिए कोई रिक्शा वाले हैं, कोई ठेला चला रहा है,

0: खेतों में काम कर रहा है तो उसको ज्यादा कैलोरी नीड है, तो उसका जो कैलोरी, जैसे अगर आम मैंने जैसे कहा एवरेज पर्सन के लिए 2000 है, तो वही वो एक हैवी वर्कर के लिए 2500 हो जाता है, 2600 हो जाता है, इस तरीके से होता है।
1: अच्छा, तो उसके कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कोई खास अनुपात भी होता है कि इतना परसेंट जो इस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट लेना है, इस रेशियो में प्रोटीन लेना है, कोई ऐसे कुछ?
0: हाँ हाँ, कुछ ऐसे भी रहता है। हम लोग बोलते हैं कि आपका जो फूड होना चाहिए दैट इज 60% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करवाते हैं।
1: ये जो पोषक तत्व की बहुत बात होती है कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हमें लेना चाहिए, पोषक तत्व का क्या मतलब है?
0: पोषक तत्व मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो एक पोषक तत्व में आता है। अच्छा। हमारा विटामिन है वो पोषक तत्व हुआ, मिनरल्स है वो पोषक तत्व हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स है वो पोषक तत्व हुआ, एक गुड फैट जिसको बोलते हैं फैट हमारा पोषक तत्व हुआ।
1: अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति जो है हमारे यहाँ अक्सर जो है चावल दाल सब्जी खाता है, रात को रोटी सब्जी खाता है, बहुत मुश्किल से हुआ तो वो जो है सो कि दूध उसको मिलता है तो पी लेता है, तो क्या ये सफिशियंट है उसके लिए?
0: नहीं, अगर हम देखें तो सफिशिएंट नहीं हो पाता है उनके लिए। तो हम लोग फिर ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको मिल्क नहीं हो पाता है तो आप जो हैं जो फोर्टिफाइड आइटम हैं जैसे कि गुड़ है जो बहुत सस्ती आती है, आप गुड़ वगैरह खाएं, आप चने वगैरह खाएं, आप सत्तू का इंटेक करें। जहाँ तक प्रोटीन का सवाल है तो हम सत्तू से भी एक एडिक्वेट प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं उसको कि आप जैसे कि अनाज में जैसे कि साबुत अनाज का आप ज़्यादा उपयोग करें, अंकुरित वगैरह ज़्यादा खाएं जो कि आपको कैल्शियम का जो अगर आप दूध नहीं भी पी पा रहे हैं तो कैल्शियम आपको उससे भी कुछ मिल सकता है।
1: मतलब जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सत्तू चना मूंग ये सब चीजें जो है गुड़ काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या है, जो खरीद सकते हैं?
0: जो खरीद सकते हैं उनके लिए है कि आप दूध पिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, दूध खाएं, दही खाएं, अंडा वगैरह लें, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन वगैरह खाएं। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे आपने कहा जो ले सकते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, जिससे कि आजकल जो आप बीमारियां देख रहे हैं डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, वो कारण है इसी ओवर न्यूट्रिशन का कि वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो बैलेंस डाइट से ज़्यादा ले रहे हैं खाना, इसलिए उनका जो है जो शुगर ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं वो, तो उनको भी नीड है कि हाँ वो एक अपना एक तय करें कि हाँ कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना हमको खाना है, इस तरीके से।
1: ये तो नॉन वेजिटेरियंस की बात हुई, जो वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है वो यदि कोई चाहे कि बहुत हम रिच डाइट लें उसके लिए रिच डाइट क्या हो सकता है?
0: उनके लिए अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनके लिए है वो पनीर का इस्तेमाल करें, पनीर रोज खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम पनीर अगर ले रहे हैं तो उनका एक अच्छा उनको अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। वेराइटी ऑफ दाल खाएं, राजमा वगैरह जो आता है, जो बीन्स वगैरह वाले जो दाल होते हैं उनको लें, मखाना वगैरह वो खा सकते हैं, मखाना रिच कैल्शियम है, तो इनको अगर हम इस तरीके से लें तो वहाँ पे जो नॉनवेज वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी।
1: फ्रूट्स के बारे में बातें होती हैं कि अखरोट वगैरह जो है इसका भी सेवन किया जा सकता है?
0: हाँ, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट लें, क्योंकि अखरोट और बादाम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ड्राई फ्रूट्स अगर खा सके तो वो खा सकते हैं।
1: अगर किसी ने ज्यादा खा भी लिया है यदि तो उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए एक्सरसाइज यदि
0: करता है? एक्सरसाइज अगर करता है ज्यादा, अगर मान लीजिए फूड इनटेक हो गया लेकिन उसका अगर कैलोरी वो बर्न करता है कि अगर वो एक्सरसाइज करता है तो बात फिर वहाँ पे इक्वल हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं।
1: यानी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरी बर्न होगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नंदिनी सिन्हा से जो कि जानी मानी डाइटिशियन है यहाँ की। हमारी बातचीत का विषय था बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। तो आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का पहला पुष्प राष्ट्र को समर्पित ये देशगान।

हनुमान की भुजाएं। आइए इस दिव्य गीत के माध्यम से संकट मोचन की महाबली वंदना में लीन हो जाएं।

विशाल मिश्रा के भक्ति गीत की मधुरता के बाद। आइए अब लता मंगेशकर की दिव्य आवाज में हनुमान चालीसा का आनंद लें। यह पवित्र पाठ हमारे मन को असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हनुमान चालीसा। अब प्रस्तुत है राम भजन, जो हर दिल को भक्ति के सागर में डुबो देगा।

अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और जया किशोरी के स्वर में ये भक्ति गीत। अब प्रस्तुत है पंडित जसराज के स्वर में एक ऐसा दिव्य भजन जो भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी के अगाध प्रेम और उपकार को समर्पित है।

पंडित जसराज के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कांड। आज के प्रसंग में आपने सुना अनुराधा पौडवाल को। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 11:30 पर, अपराह्न 2:30 पर। दिन में 10:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम। दिन के 11:00 समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कलाकार होंगे वसुंधरा कोमली और साथी। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। इसके तुरंत बाद शाम 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। इस सप्ताह संसद में का प्रसारण समय होगा आज रात 8 बजे। कुछ लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 से। विज्ञान भारती ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे समय होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद्भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामी सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धकस्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षता

0: संख्यायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंग प्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वति राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह

0: कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: मनुष्य छी आओर मनुष्यके लालसाके कमी नहि छै। जब एकटा चीज भेट जाएत तऽ ओहिसँ बड़का चीज पाबैके कोशिशमे हमसब लागल रहै छी, मुदा सब चीज पाबैके लेल अपना सबके कर्म करऽ पड़ैत अछि आओर जखन कर्म अछि तऽ फल भेटबे करत। एकर चिंता अवश्य करी कि कर्म हमरा नीक करबाक चाही। आओर आजुक दिनके इतिहासमे की सब अछि खास सेहो श्रोता सबके अवगत करा दियौ।
1: जरूर, आज है 25 जुलाई का इतिहास में क्या है खास, उस पर डालते एक नज़र। तो 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। वे भारत के प्रथम महिलाएं राष्ट्रपति बनी थी। 1909 में फ्रांसीसी विमान चालक हुई ब्लेरियट ने हवाई जहाज से पहली बार इंग्लिश चैनल पार किया था। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की सतह से इतिहास के प्रसिद्ध फेम ऑन मार्स मंगल ग्रह पर चेहरे का तस्वीर ली थी। 2017 में गुजरात में बाढ़ से 70 से ज़्यादा लोग घर से बेघर हुए थे। 1920 में गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के भूतपूर्व 5वें मुख्यमंत्री थे का जन्म हुआ था। 1922 में श्याम चरण दुबे भारतीय समाज शास्त्री एवं साहित्यकार थे का जन्म हुआ था। तो ये थे आज के इतिहास में कुछ थे खास, उस पर डाले थे एक नज़र।
0: और देखियो अपना कार्यक्रम में बहुत चीज समेट कने छी और धीरे धीरे श्रोता के समक्ष परसे छी। आई अही के क्रम में अपना सबके चर्चा के विषय अछि लोकतंत्र के मजबूती में नागरिक के भागीदारी, यानी अपन सबके भागीदारी, और वर्षा जल संचयन के सफल बनेबा के लेल की करबाक चाही से। मुदा समय जे छै भ गेल अछि मैथिली सुगम संगीत के, तऽ अब पहले सुन लै छी मैथिली सुगम संगीत।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुनी नहार समस्त श्रोता के आजुक नव अंक में स्वागत है। हम छी अंजनी और हमरा संगे छे मनोजी। मनोजी अहूँ के हमरा तरफ से नमस्कार।
0: नमस्कार अंजन जी और नमस्कार मिथिला सुनने वाले आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं सुविचार से, तो आज का सुविचार है इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छाएं पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
1: बिल्कुल और सही कहलखिन हन। जे भी ज्ञानी लोग कही के गेलखिन है वो अपना सके मन के अनुसार है किया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी हम लोग सुन रहे थे महादेव ठाकुर के आवाज़ में ये प्यारे से भक्ति गीत। ऐसे साथ चलते हैं जहाँ हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियाँ संस्कृति पर डालते नज़र, यानी कि हालचाल लेकर के उपस्थित हैं अंजनी जी।
3: धन्यवाद मनोज जी। अब हम सुनो हमारा सा हालचाल। कमतौल प्रखंड स्थित राम जानकी कुटीर परिसर में चल रहा 9 दिवसीय श्री श्री 108 सीताराम नाम धुन नवाह महायज्ञ से क्षेत्रक माहौल भक्तिमय भ गेल अछि। 9 दिन से लगातार चल रहल महायज्ञक समापन शनि यानी आय भ जायत। आयोजन समिति के अनुसारे आय संध्या काल में मटकोर उत्सव के संग मुख्य अनुष्ठानक आरंभ हैत। ओतहि रवि के श्री सीताराम विवाह उत्सव के आयोजन कयल जायत। डीईओ विद्यानंद ठाकुर जिला के सब राजकीयकृत राजकीय परियोजना आ चिन्हित माध्यमिक विद्यालय सबके प्रधानाध्यापक सब आ प्रभारी प्रधानाध्यापक सबके लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र आ डीसी विपत्र 7 दिनक भीतर जमा करबाक निर्देश देलन अछि। एहि संबंध में जारी पत्र में स्पष्ट कयल गेल अछि जे सब योजना से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र सबके शीघ्र ही निष्पादन

0: राय विभाग के सर्वोच्च प्राथमिकता अछि। अखिल भारतीय स्तर पर चलि रहल गो सम्मान आवाहन अभियान के तहत आगामी 27 जुलाई के दरभंगा में विशाल गो सम्मान यात्रा निकालल जायत। अभियान के जिला प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर आ उत्तर बिहार अभियान प्रमुख विजय झा बतौलनि जे भोर 10 बजे मनोकामना मंदिर से संत महात्मा सबके नेतृत्व में ई अभियान शुरू कयल जायत। मणिगाछी प्रखंड के पंचायत सब में गन्ना किसान सब के पंजीकरण के लेल लगायल गेल शिविरक शुक्र दिन वीडियो संदीप कुमार पांडे औचक निरीक्षण कयलनि। वीडियो बतौलनि जे सकरी चीनी मिल के अंतर्गत एहि क्षेत्र के किसान सबके गन्ना उत्पादन के लेल जागरूक करबाक लेल आ को ऑपरेटिव के सदस्य बनेबाक लेल शिविर लगायल गेल अछि। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के शिक्षा शास्त्र विभाग में शिक्षा शास्त्री सत्र 2026-28 के नव प्रवेशी विद्यार्थी सबके लेल शुक्र दिन दीक्षारंभ कार्यक्रम भेल। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे कहलनि जे वर्तमान समय में केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं अछि, एकटा सफल शिक्षक बनबाक लेल व्यवहारिक प्रशिक्षण, शिक्षण कौशल, तकनीकी दक्षता, नैतिक मूल्य सब आ भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय आवश्यक अछि। कुशेश्वर स्थान में कमला नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि भेला से सोहरबा घाट के डायवर्सन पर बाढ़िक पानि चढ़ि गेल अछि, जाहि कारणे सती घाट, राजघाट मुख्य सड़क मार्ग पर आवागमन पूर्ण तरह से ठप भऽ गेल अछि। नतीजा ई जे प्रखंडक दक्षिणी हिस्सा के 6 गोट पंचायत सब के संपर्क सड़क मार्ग से टूटि गेल अछि। बिहार सरकार के नव नीति सब आ जनहितकारी कार्यक्रम सबके प्रचार प्रसार के लेल 25 जुलाई के 10 बजे जिला प्रखंड, नगर निकाय आ पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कयल जायत। एहि संबंध में मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में डीएम कौशल कुमार विस्तृत जानकारी करैत सब संबंधित अधिकारी सबके आवश्यक तैयारी समय पर पूर्ण करबाक निर्देश देलनि अछि। बहेरी प्रखंड के पंचायत समिति सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोशन कुमारक अध्यक्षता में शुक्र दिन बैसार भेल। एहि पंचायत सब में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, पंचायत सचिव आ सब कार्यपालक शामिल भेला। बैसार में छूटल लाभुक सबके ई KYC आ राशन कार्ड के निर्माण के लऽ कऽ संबंधित कागजात के लऽ कऽ ओ परिवारक मुखियाक नाम सँ जाति, आवासीय आय, बैंक खाताक छाया प्रति, सब सदस्यक आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर के अनिवार्य रूप से विकास मित्र के पास उपलब्ध करबाक लेल कहलनि। ओ राशन कार्ड निर्माणक प्रक्रिया के पूर्णतः निःशुल्क कहलनि। एखन अपने सब सुनि रहल छी हालचाल आकाशवाणी दरभंगा से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: से साल चाल विरामक पश्चात प्रेमचंद जयंती समारोह के अवसर पर होबय वाला सांस्कृतिक आ बौद्धिक प्रतियोगिता के तिथि में बदलाव कयल गेल अछि। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति जनतब देलक जे समारोह अपरिहार्य कारण से 2 अगस्त के होबय वाला प्रतियोगिता के स्थगित कऽ आब 30 अगस्त के अभिभाषण, काव्य पाठ, गीत, निबंध, क्विज, चित्रांकन आ गणित सहित विभिन्न विद्या सब में प्रतियोगिता आयोजित कयल जाय। इच्छुक छात्र छात्रा आ 20 अगस्त धरि पंजीयन करा सकैत छथि। मिलत कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर सिद्धांत शंकर सिंह के अध्यक्षता में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के बैसार भेल। एहि बैसार में शोध कार्यक नव दिशा देबाक आ अनुसंधान गतिविधि सब पर प्रभावी बनेबाक चर्चा भेल। प्रधानाचार्य कहलनि जे उच्च शिक्षा में शिक्षक के भूमिका केवल शिक्षण धरि सीमित नहीं अछि, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य सेहो हुनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छन्। डॉक्टर अब्दुल सलाम जिलानी जुलाई 2025 से एखन धरि शोध गतिविधि सब के व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करबाक लेल आ ओकर दस्तावेजीकरण पर जोर देलनि। शिक्षा विभाग बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के प्रभावी कार्य क्रियान्वयन के लेल विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कऽ देलक अछि। विभागीय अधिसूचना के माध्यम सँ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर होबय वाला स्थानांतरण प्रक्रिया के विभिन्न बिंदु पर स्पष्ट निरीक्षण कयल गेल। विभाग कहलक जे एहिसँ स्थानांतरण के प्रक्रिया यूजर फ्रेंडली बनत। SOP के अनुसार पहिल बेर स्थानांतरण के लेल आवेदन करबा में निर्धारित न्यूनतम 5 वर्षक सेवा अवधि के शर्त के शिथिल कयल गेल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG गणित विभाग में 25 जुलाई के विभागीय सभागार में वैदिक सूत्र आधुनिक गणित विषय पर सेमिनार हैत। सेमिनार में भागीदारी लेनहार निशुल्क भागीदारी कऽ सकैत छथि। कोनो विषय में इच्छुक प्रतिभागी शामिल भऽ सकैत छथि। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लऽ कऽ नगर के सब मध्य विद्यालय के विज्ञान आ गणित शिक्षक के लेल 25 जुलाई के प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित कयल गेल अछि। कार्यशाला भोर 11 बजे से आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में होयत। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करुणा कश्यप जारी आदेश के अनुसार एहिमे कक्षा 6 से 8 धरि के विज्ञान आ गणित के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग गतिविधि के सफल संचालन पर प्रशिक्षण देता। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सभागार में शुक्र दिन BDO चंदन कुमार के अध्यक्षता में उच्च माध्यमिक विद्यालय सबके प्रधान अध्यापक सबके बैसार भेल। बैसार में निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से विद्यालय सब में निर्वाचन साक्षरता आ जागरूकता बढ़ेबाक उद्देश्य से विभिन्न गतिविधि के आयोजन के लऽ कऽ विस्तार से चर्चा कयल गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे 24 जुलाई से 29 जुलाई धरि प्रखंड के सब विद्यालय सब में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जायत। तो ई छल हालचाल।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन।

0: स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब डालते हैं आज 25 जुलाई के मौसम में क्या कुछ है। ग्रामीण केस मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी जुलाई 2029 से 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर 28 से 29 जुलाई के आसपास गरज के साथ बिजली चमकने एवं तेज हवा चलने की संभावनाएं हैं। गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के जिलों में कुछ कुछ स्थानों पर घने बादल तथा मध्य से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान के अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बाकी जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं नहीं हैं, कहीं कहीं हल्का वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर के समय 50 से 55 प्रतिशत के बीच रहने की संभावनाएं हैं। पूर्वानुमान के अवधि के दौरान हवा मुख्य रूप से पूर्व दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावनाएं हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी से सर डालते हैं कुछ लोकल अपडेट पे नज़र। रेल की अगर बात करें तो 8:15 पे है नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति, 12:33 पे है पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और 7:00 है नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमान की अगर बातें करें तो 9:30 पे है मुंबई के लिए जो रोज़ाना जाती है, 11:30 पे दिल्ली के लिए भी रोज़ाना जाती है, 12:25 पे कोलकाता के लिए, 12:50 पे दिल्ली के लिए, 1:35 पे मुंबई के लिए जिसका समय है रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, 3:00 हैं हैदराबाद के लिए और 4:35 पे हैं दिल्ली के लिए। बात करें अगर बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है जो शहर के मोबाइल नंबर है 77-63-81-87-77, ग्रामीण क्षेत्र के नंबर हैं 92-64-45-64-12, बेनीपुर साइट के हैं 76-33-99-78-31 पर संपर्क कर सकते हैं। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायतों को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष में फ़ोन कर सकते हैं जिसका नंबर है 62-02-77-77-74-0 पर शिकायत कर सकते हैं।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11:00 मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11:00 मन की बात।
4: तक ने सुने सब सुन कनिकाल पहिने चर्चा केने छलहुँ मनोज जी, जे आइ अपने सब श्रोता सबके समक्ष चर्चा करब लोकतंत्र के संबंध में। तो लोकतंत्र जे छै ना से केवल चुनावे के समय वोट डालला से सीमित नहीं अछि, बल्कि ई एकटा निरंतर चलय वाला प्रक्रिया अछि जाहिमे नागरिक के हरदम एकटा नव भूमिका निभेनाइ जरूरी रहै छै। आर देखियो जे जखन नागरिक सरकार के काम पर नजर रखैत अछि आ सवाल पूछै अछि तऽ शासन प्रणाली जे छै से अधिक मजबूत होइ छै, पारदर्शिता ओहिमे आबै छै, उत्तरदायित्व ओहिमे बुझल जाइ छै अपना सबके।
2: ई बात सही है, ई बहुत महत्वपूर्ण विषय है अंजनी जी। लोकतंत्र की मजबूती में नागरिक की भागीदारी, लोकतंत्र में नागरिक ही स्वच्छ होते हैं और नागरिक को ही सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र सफल नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, इसीलिए नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर देखा जाए तो नागरिक मतदान करके ही सिर्फ अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। यदि नागरिक जागरूक होकर के मतदान करे तो योग्य और ईमानदार प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।
4: बिल्कुल,
2: केवल मतदान करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि नागरिकों को सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए तथा ध्यान भी देना चाहिए, जो जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं तब सरकार भी अधिक जवाबदेह बनते हैं।
4: बिल्कुल, जे एकटा कहल गेलै जे हमर सबके जे नेतृत्व करय वाला के हम आनै छी, ओ कोन कारण से कोन अधिकार से हम आनि रहल छी, ओ हमर शासक जे छथिन हुनका पर जवाबदेही जे हम दऽ रहल छी, एकर सवाल उठेबाक पूर्ण अधिकार हमरा सबके छै। और हम नागरिक छी, अपन देश के एकटा सफल नागरिक छी, एकटा अपना देश के मजबूत बनेबाक लेल, अपन देश के रक्षा के लेल, अपन अधिकार के लेल हर संभव हरदम प्रयास करै छी। जखन कि अधिकारक गप अछि तऽ अधिकार के बात तऽ जेना कि अपना सबके देखियो घर में छी और अधिकार सबसे पहला गप सहभागी रहबे तखने अधिकार मांग सके छी। अपना सब अधिकारी नहीं छी, पहले अपन जिम्मेवारी नहीं निभावे छी, एमे सहभागिता नहीं दे छी, तो अपने सब एमे अधिकार मांग के अधिकारी नहीं छी। और लोकतंत्र की अहाँ देखियो ना, गांव से लक शहर तक, गांव में जखन एकटा सामाजिक लोक अपने सबके रहे छथिन, ओ सामाजिक लोक एकटा समाज के सुरक्षा के लेल बहुत चीज आने छथिन, बहुत प्रयास में लागल रहे छथिन। और ई त अपन सबके शासक के चुनवा के अधिकार छ अपना सबके।
2: बिल्कुल सही है, नागरिक समाज सेवा, जन जागरूकता अभियान और सामाजिक कार्य में भाग लेकर के भी लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और अन्य संचार के माध्यम के द्वारा नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं तथा जनहित के मुद्दों पर भी को भी सामने ला सकते हैं।
4: अखन देखियो सार्थक संवादक सेहो महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक बहस आ नीति पर अपन राय राखि कऽ नागरिक देश के विकास के सही दिशा दऽ सकै छथि। कानून के सम्मान हम करै छी, हमर देश के नागरिक जे छथिन एकटा जिम्मेदार नागरिक जौं हम अहाँ छी, तऽ कानून के जते भी नियम छै ओकर पालन अपना सबके करैक चाही और एक दोसर के अधिकार के आदर करे के चाही, सम्मान करे के चाही। और सब किछु में अपन भागीदारी जखने देबै तो अपन समाज से लग देश मजबूत रहते, ओकरा क्यों तोड़ नहीं सके छे।
2: सही बात है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ रखनी चाहिए, साथ ही नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए और समाज की भाईचारों तथा सद्भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा भी नागरिकों को भागीदारी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षित नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझते हैं।
4: बिल्कुल, और देखियो जो शिक्षित जखने नाम ले लूँ तो अपने सब शिक्षित छी और एक टा शिक्षित मनुष्य के की कर्तव्य होइ छै अपना समाज के लिए, अपना राष्ट्र के लिए, ई हमरा केकरो समझाबऽ नहीं पड़ते। हमरा की चाही, हमरा की आवश्यकता अछि और ओहि के लिए हम एक टा सफल शासक के चुनाव करब, ओहि मतदान अनिवार्य अछि, सब किछु अनिवार्य अछि और कोनो प्रलोभन, कोनो नैतिकता छोड़ कर अपने आप सब अपन विचार करी जे हमर शासक केहन हेबाक चाही और लोकतंत्र तखने मजबूत हेतै जखन हमरा अहाँ में भाईचारा रहते हम एक दोसर के

0: सम्मान करबै, एक दोसर के अधिकार के सम्मान करबै, तखने लोकतंत्र मजबूत रहतै। एना नहि कि एक तरफ गांव घर में कहावत अछि जे अहाँ पूरब जाओ हम पश्चिम जाइ छी, तऽ तहिना जो पूरब पश्चिम भऽ जाय तऽ लोकतंत्र मजबूत केओ नहि कऽ सकैत अछि। आओर जँ एक संगे अपना सब एक अधिकार के लेल लड़ रहल छी तखन हमेशा अपन राष्ट्र, अपन देश, लोकतंत्र मजबूत रहतै। और जहिना कार्यक्रम में अपने सब सब किछ आने छी श्रोता सब के लेल, समय भ गेल अछि मनोरंजन के, त आब पहिले सुन ले छी फिल्म संगीत।
1: आइए सुनते इस प्यारे से गीत को।
2: जिस पथ पे चला उस पथ

0: जिस पथ पे चला। बिल्कुल सही, जय पथ पर नागरिक चलथिन, जे सफल नागरिक छथिन हुनका संगे एकटा कड़ी के लक अपने सब जुड़ के चले छी। और अगर एकटा रोशनी देखावा वाला मिल जाइत अछि तो ओ रोशनी के इजोत में अपना सब आगू बढ़ जाए छी। और जना कि देखियो जे अपना त वर्षा के समय त भ गेल अछि, रौदो उगैया, कखनो कखनो बरसो हुआ लगैया, तो वर्षा के जल जे छै ओ संचय केनाय बहुत लोग नै बुझै छथिन। संचय मतलब ओकरा जमा केनाय। देखियो जे जमा जौ ओइ पानि के क लै छी तऽ बहुत समस्या से अपने सब उबर सकै छी, ई लोग बुझ नै रहल छथिन। और अइ चीज के पहल तऽ पहले हम अपने सब के करअ पड़तै। जल संचय के मतलब छै, वर्षा जल संचय के मतलब छै जे छत के पानि के पाइप के जरिए जमीन के अंदर बनल रिचार्ज पीट या गड्ढा में भेजल जाए, फिर बड़का टैंक में ओकरा इकट्ठा करी। चाहे भूजल होइ छै भूमि में जे जल संचय होइ छै से, चाहे टैंक में अपना सब जमा। पहले बच्चा छलौं ना हम सब तो देखे छलौं जे खपरा पर खपरा के घर रहे कि पक्का के घर रहे, ओहि सब में डोल बाल्टी लोग लगा दै छलखिन या जे पानि रहत तऽ गाछ वृक्ष पटा लेब। और बहुत जगह एहन होइ छलै जे नाद बना बना के लोग बरखा के जल जे छै से संचय करै छलखिन और खेती बाड़ी करै छलखिन ओहिसँ, मुदा आब ई सब चीज देखम नहीं आबैत अछि।
1: ई बात सही है कि देखने के लिए मतलब हमारे अपने जगह पे नहीं करते हैं, जो हम नहीं कर पाते इसलिए नहीं देखने के लिए, लेकिन बहुत ऐसा जगह है अंजनी जी जहाँ जल संचय किया ही जाता है। लेकिन हमें भी अब एहसास हो रहा है कि जल हमारे जीवन का एक आधार है, इसके बिना हम पृथ्वी पर जीवन ही नहीं जीवित रह ही नहीं सकते हैं और जीने का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल के अधिक अधिक से अधिक उसका दोहन करना, बर्बादी करना जो हमारे लिए सबसे बड़ा दुरुपयोग उसका हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अभिशापित किया जा रहा है। जल एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जो आज देखिए अंजनी जी की बहुत सारे ऐसे चापाकल है जो सूख रहा है। कुआं नदी तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसको ख़त्म ही किया जा रहा है, जिसके कारण पानी आज चापाकल खास करके मई जून के महीना में, अभी जहाँ बारिश से पानी पूरा चमचम होता था गाँव सब में नदी नाले में, जहाँ अभी सूखे पड़े हुए हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पानी सप्लाई से उनका पानी भोजन बन रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, जो इसको हम बर्बादी करते हैं और उसको व्यवस्थित कर करके नहीं रखते हैं। जल संचय एक प्रभावी और आवश्यक उपाय है, जो आपने अंजनी जी कहा पानी संचय करना, जो हमारे लिए बारिश का पानी होता है बहुत जगह ऐसे हैं जो राजस्थान समय देखने के लिए मिलता है। अपने यहाँ भी कुछ लोग थे जो कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है। पानी को संचय करते हैं, वर्षा के पानी को हम लोग संचय करते हैं, अर्थ होता है कि वर्षे के जल को एकत्रित करके उसको एक जगह कुआं या कुछ नदी टाइप का कुछ बना करके वहाँ पानी को व्यवस्थित करके रखना, जो उस पानी का उपयोग आप बहुत सारे काम में कर सकते हैं। अगर माल मवेशी पाले हुए हैं तो उसको पिलाने के लिए है, पेड़ पौधे रोपे हुए हैं उसको पटाने के लिए हैं, साग सब्जी लगा रहे हैं उसको लगाने के लिए, मतलब आप ढेर सारे कपड़े भी हैं तो उसको भी आप उसमें धो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग करना चाहते नहीं हैं और इस चीज़ को करना है, नहीं करने का कारण है कि आज हमें पानी का इतना बड़ा समस्या झेलना पड़ रहा है।
0: बात वह है मनोज जी, जी जी अहाँ कहलिए, और कारण की छे ना कि अपना सब पानिक जे महत्व छे ओहि पर ज़्यादा नहीं सोच पाबै छे, कि है तो लोग कहता कि समय के अभाव है। वह बात हमरो कहनाम छला जे लोग नहीं बुझ रहल छथिन। एखन पहला के समय में की होइ छलै जे लोग पानिक महत्व बुझै छलखिन जे अही पानि से हमर जीवन चलत, लोग बुझै छलखिन। एखन किछ समय पहले या एखनो बहुत जगह समस्या भऽ गेल अछि, मुदा बरखा के जे पानि भेल अछि एखन तऽ कनि समस्या कम भेल अछि। और एक बेर सुनने हैब जे एहन समस्या भऽ गेल छलै जे गाँव से लऽ कऽ शहर धरि पानिक समस्या एहन छलै जे लोग पानि बाहरसँ आनि आनि कऽ हुनका देल जाइ छलनि जीवन के लेल, जियो के लेल। एखनो हमसब बुझि नहि रहल छी, किएक तऽ ब्रश करै छी टंकी चलैए, बहुत जगह एहन छै जे टंकी नहि चलै छै तैयो कलो छन चापाकल, तऽ ओकरो व्यवस्थित ढङ्गसँ नहि राखि पाबै छथिन ठंडा पानि लेबऽ के लेल या कोनो चीज एहन करबाक लेल पानि बहि रहल अछि आ अपने काम कऽ रहल छी दोसर, तऽ ई चीज जे छै ने से अपना सबके समझदारीसँ काम लेबऽ पड़तै। बरखाके जल रहै या ओहन चापाकलसँ आबऽवला, टंकीसँ आबऽवला, अपना सबके संचय, एहिठाम अपनेसब संचयके बात कऽ रहल छी जे केना पानिके संचित करब, ओहि संचित पानिसँ हमर जीवन केना कऽ सुरक्षित रहत। आ जे देखियौ ने, अहाँ खाना नहि खइयौ तऽ एक घंटा दू घंटा चलि सकै छै, मुदा जहन प्यास लागत तऽ हैत जे कतौसँ कनियक पानि भेट जाय, जे गला जे सुखल अछि ओ कनी गील भऽ जायत, तऽ ओ चीज, ओ गील जे होइ छै ओ कनिक पानिके चलते हमरा अहाँके बहुत परेशानी झेलऽ पड़ै छै। ई जरूरी नहि छै जे हर चीज अहाँ सबके समझाबैये पड़तै हमरा अहाँके। हमसब ज्ञानी छी, हमसब शिक्षित छी आओर एकटा शिक्षित समाजमे हमसब रहि रहल छी, आओर एहि चीजके महत्व अगर हम नहि बुझि रहल छी तऽ फेर तऽ शिक्षित भेनाइ अनिवार्य नहि छै।
1: सही बात है। आओर इसे देखै तो आधुनिक समयमे भी इस पद्धति को अपना करके जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता था। देश में अनेक राज्य हैं जहां बरसे के पानी को जल संचय की सफल पहल देखने को मिल रही है। राजस्थान का बात हम लोग पहले भी किए थे, राजस्थान में जो जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य में से एक था, वहां लोग ने पारंपरिक और तालाब का पुनर्निर्माण करके वहां भू जल स्तर बढ़ाने को में सफलता प्राप्त कर लिए हैं।
0: आओर लोकके एकटा धारणा भऽ गेल छनि कि बरखाके पानि जे छै से बढ़िआँ नहि होइ छै, गन्दा होइ छै, मुदा ओकरा अहाँ इकट्ठा कऽ कऽ देखियौ, ओ जल बहुत महत्वपूर्ण होइ छै। जेना कार्यक्रममे बहुत महत्वपूर्ण होइ छै श्रोता सबके मनोरञ्जन, तऽ किएक नहि मनोजजी चलिए अपना सब मनोरञ्जनके दिस।
1: जरूर आइए।

0: बहुत सुंदर गीत। और देखियो जे अपने से चर्चा केने छलो लोकतंत्र में क्या मजबूती में अपन सब के भागीदारी और वर्षा जल के संचयन और दुनू के जो मिला ले छी तो जो अपन भागीदारी देश में अपन सब के रहत तो अवश्य है जे हर संकट से अपना सब उबर जाए। और अपना कार्यक्रम में समय नहीं अनुमति दे जे अपने सब गप करी श्रोता सब साहब या विनती है जे आगू काल अपने सब फिर अही समय में अपने सब श्रोता सबके समक्ष उपस्थित है। अही संग हमरा अंजनी के
1: और मनोज को दीजिए इजाजत। नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज MV ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
8: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए

0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
2: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि में सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यता 3 डिमांड थी और 5 सुझाव हुई।
2: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंत्री हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोट्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें करगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्स यंगस्टर्स फॉर द सजेशंस टू हिज वीडियो ऑन प्रपोज्ड रिफॉर्म्स against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video

0: stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Omkanko and Odisha. And in the Commonwealth Games, Chandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight
1: की आशंका को देखते हुए 24 जुलाई से 26 जुलाई की सुबह 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे असद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरक खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात एनटीए में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभु सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरख्वास्त तलब की है। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील नौ के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। एनटीए ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मरतबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तिहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की इदारतें व महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। तहकीकात के अलावा ये खसूसी टास्क फोर्स मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ मौसर तालमेल रखेगी ताकि इस तरह के मुकदमात में तेज़ी लाने के लिए रोज़ाना अहमात को यकीनी बनाया जा सके। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: दिल्ली पुलिस ने

0: खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि ये बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
3: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। विभिन्न छात्र संगठनों के बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पटना में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री आज राज्यवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और नालंदा के झंडू कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार।

0: से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: गौरतलब है कि श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। यह अपने पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से आयोजित बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार बंद को राजद समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशन, ट्रेन और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती की गई है।
2: राजधानी पटना में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 300 पीटीसी जवान और 500 अतिरिक्त होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर नगर 1 और नगर 2 पुलिस अनुमंडल में विधि व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रहने के चलते सोशल मीडिया सेवाओं पर प्रतिबंध को कल देर रात बहाल कर दिया है। सरकार ने जिले में चिन्हित स्थानों पर अफवाहों और भड़काऊ संदेशों के प्रसार की आशंका को देखते हुए 24 जुलाई से 26 जुलाई की सुबह 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: पटना में पेपर लीक को लेकर छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने पालीगंज से भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ और आयसा के 4 छात्र नेताओं सहित 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। विधायक संदीप सौरभ को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय समेत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में के 24 हॉस्टल और लॉज में छापेमारी की। इस दौरान 43 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से पूछताछ के बाद 24 को छोड़ दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में 3 छात्राएं भी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्यवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पटना की ज्ञान भवन परिसर स्थित बापू सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य भर में 11,464 करोड़ रुपए की लागत की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे। 6 मंजिला इस भवन में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, रेडियोलॉजी, ट्रॉमा और आपातकालीन सेवाओं सहित कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में उद्योगों के विकास, निवेश संवर्धन और आवश्यक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वे पटना में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री

0: दुबे ने उद्योग जगत से सरकार के साथ साझेदारी में आगे आकर नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जारी रुपे कार्ड के इस्तेमाल में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रुपे कार्ड के कुल उपयोग में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 11% दर्ज की गई है, जो डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। डाक विभाग ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार परिमंडल में अंतर राज्य लॉजिस्टिक्स सेवा शुरू की है। नई सेवा के तहत देश के विभिन्न राज्यों के बीच पार्सल और व्यावसायिक सामान की तेज और भरोसेमंद ढुलाई की सुविधा मिलेगी। बिहार सर्किल की निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को कम लागत पर समयबद्ध परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हेवीवेट स्पर्धा में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नालंदा के रहने वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 196 किलोग्राम का रिकॉर्ड प्रयास भी किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। पोलियो और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अपनी उपलब्धि पर झंडू कुमार ने कहा कि वे भारत के लिए पदक जीतकर काफी खुश हैं।
1: मेरा नाम संजय कुमार पैरापावर लिफ्टर। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना देश का झंडा आज ऊंचा किया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। इधर इस मामले में जगदीशपुर के अनुमंडलाधिकारी संजीत कुमार और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में दोनों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे। बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी देवेश सेहरा को वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव तथा कुलदीप नारायण को नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। बिहार में नेपाल मूल की विवाहित महिलाओं का पंचायतवार डेटा तैयार किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर नेपाल से विवाह कर बिहार में रहने वाली महिलाओं की नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापित जानकारी संकलित कर जिला प्रशासन के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अद्यतन और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना तथा नागरिकता संबंधी अभिलेखों को व्यवस्थित करना है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण

0: दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
1: दिनांक 25 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय फुतौली में मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने के मामले में प्रधानाध्यापिका संजुला कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्कूल की चारों रसोइयों की सेवा समाप्त कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक और पिकअप वैन से 155 कार्टन शराब बरामद की है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 14 लाख रुपए बताया जाता है। वहीं जिले के पुनपुन स्थित केवड़ा ओपी के पास एसटीएफ ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, 12 कारतूस, राइफल के 32 बैरल, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और जिला औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पेपर लीक को लेकर हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकार ने नीट को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के मामले में माले विधायक गिरफ्तार, आज बिहार बंद, 8 उपद्रवियों पर इनाम घोषित। प्रभात खबर की सुर्खी है, पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट में मंजूर, 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, 3 माह में निपटेगा केस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल राष्ट्र बैंक ने बदला नियम, नेपाल में अब 200 और 500 के भारतीय नोट ले जा सकेंगे। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, जहानाबाद फायरिंग पर सदन में जोरदार हंगामा। आज अखबार लिखता है, बिहार विधानमंडल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 21 विधेयक पारित, 1038 प्रश्नों पर हुई चर्चा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। विभिन्न छात्र संगठनों के बिहार बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पटना में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री आज राज्यवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और नालंदा के झंडू कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाया, पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
3: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
4: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
3: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
4: 1950?
3: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
2: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
3: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
4: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
3: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार

0: केंद्र मतदान प्रक्रिया चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता हर सवाल का जवाब एक नंबर पर
1: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी
0: बिल्कुल 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
2: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
0: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
5: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
4: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा।

नाइट टू टर्न द टाइड है, यानी मिलकर हालात का रुख बदलें। यकीनन हम तमाम लोग जब मिलेंगे तो बहुत सारे रास्ते हमवार होंगे और हम खुद के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी उम्मीद के किरण छोड़ सकते हैं और उन्हें उनके उन परेशानियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। तो आइए हम तमाम लोग इस बात का अहद करें कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाजिम करार देंगे और अपने गिर्दोनवाह में जो भी परेशान हाल लोग हैं उनकी बासपुरस करेंगे और उनके उन परेशानियों में अपनी जानिब से हत्तल इम्कान मदद की कोशिश भी करेंगे। आइए इस गुफ्तगू के बाद सामीन हम तवज्जो करना चाहते हैं अपने अगले पेशकश की जानिब। लीजिए आपकी समातों के हवाले ये उर्दू फीचर रजा नकवी वाही।

0: की धूम का था। रजा नकवी जोश मलिहाबादी के अफकार और तर्ज सुखन से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्हीं के तर्ज व तेवर में मुतअद्दिद संजीदा व इनकलाबी नज़में सफ़ाए करताश पर महफूज कर दीं। भूख मशाल आज कुछ खाया नहीं, अछूत मांझी नौजवान का कोर्स किसान का गीत और चलना तेरा काम ही है राही वगैरह उनकी मशहूर जमाना और काबिल जिक्र नज़में हैं।
1: अली जव्वाद जैदी ने अपने मकाला यादों की रह गुजर बशमूल जब्त शुदा नज़में में वाही की नज़्म मांझी को भी जब्त शुदा नज़्मों में शुमार किया है। हस्ब रवायत रजा नकवी ने अपनी शायरी का आगाज गजलों और नज़्मों से ही किया। उनका इनकलाबी तेवर जोश मलेह आबादी के आहंग व तेवर से कम नहीं। आम इनकलाबी शायरों की तरह उनके यहाँ फकत घन गरज ललकार और नारेबाजी है और नबेजा हिमायत। उनका पैगाम इलाकाई व मुल्की नहीं आफाकी है। उनका फोगा फर्द वाहिद की आह नहीं बल्कि जबर व इस्तेहसाल के शिकार मजलूमों की टीस है। उनकी नज़में अवामी बेदारी का बिगुल और खुश आइंद सवेरा का बशीर है। इन कलाबी शायरों में भी रजा नकवी का मुकाम अहसन है।
0: उनकी इनकलाबी व संजीदा नज़में और गज़लें रजा नकवी के तखल्लुस के साथ मशहूर ज़माना अदबी रसाला निगार साकी और अदब लतीफ़ वगैरह में 1948 ईस्वी तक शाया होती रहीं। मुमकिन है संजीदा व इनकलाबी नज़में और गज़लें कहना रजा नकवी वाही के मिजाज व मिलान के मुनाफी रहा हो, जिसके सबब वो इस सफ़र को जारी नहीं रख सके हों।
1: अहले नज़र इस बात का बरमला इजहार व एतराफ़ करते हैं कि उनकी गज़लें इस बात की इलामिया हैं कि अगर वो इस सिन्फ पर थोड़ी सी तवज्जो देते या कम से कम गज़ल गोई से किनारा कशी अख्तियार नहीं करते तो गज़ल गो शोरा में भी रजा नकवी का मुकाम मुनफरिद व मुमताज़ होता। मुतवर मुनफरिद शायर सुल्तान अहमद बहजाद फातमी का ख्याल है कि वाही में एक अच्छे गज़ल गो शायर की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं।
2: जिस तरह अल्लामाए इकबाल ने कौमी मुफाद और फलाह इंसानियत की खातिर अपने फलसफियाना ख्यालात को इश्किया शायरी पर तरजीह दी, मुमकिन है रजा नकवी ने भी इस्लाह मुआशरा के मिशन को मलहूज़ नज़र रख कर गज़ल गोई से इरादतन किनारा कशी अख्तियार की हो और तंज़ मज़ाह को अपना मुस्तकिल मैदान सुखन बना लिया हो।

0: महमेज लगाई कि शाम तक एक नज्म मुकम्मल हो गई।
1: रजा नकवी की पहली तंजिया व मजाहिया नज्म की अशाअत का सेहरा उनके दोस्त नामवर सहाफी व अफसाना निगार सुहैल अजीमाबादी की सर जाता है।
2: मजकूरा नज्म की अशाअत और रजा नकवी से वाहिद तक के सफर का वाक्या भी बड़ा ही दिलचस्प है। रजा नकवी ने अपने नौजायदा तंजिया व मजाहिया नज्म को हिदायती नोट के साथ सुहैल अजीमाबादी के नाम इरसाल कर दिया कि वो इसे रोजनामा साथी पटना के मुस्तकिल मजाहिया कॉलम राही के कलम से मैं किसी फर्जी नाम से शाया कर दें।
0: नज़म पर अवाम व खवास की पसंदीदगी की मुहर लगी तो रजा नकवी ने भी सरकारी मुलाजमत के नागुजीर तकाजे के पेश नज़र सुहैल अजीमाबादी का ताकरदा तखल्लुस वाही को बतौर मुखौटा इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। तारीन वो हम असरों के हौसला अफजाई और मशवरे को मलहूज नज़र रख कर वाही ने अपनी पूरी तख्लीकी व इख्तराई सलाहियतों को तंजिया व मजाहिया शायरी के लिए मखसूस कर दी। गैर मुतवक्के मुद्दत में ही उनकी नज़में आसमान तंज व मजा के उफक पर शफक की तरह दावत नज़ारा देने लगीं।
1: रजा नकवी वाही की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि उन्होंने सिर्फ उन्हें नापसंदीदा व गैर महजब अशखास मकरूह एतकाद तहमात नाकार अदारों मजमून पेशों लगव रस्म व रिवाज और काबिल गिरफ्त मामलात व निकात को ही हदफ तंजो मलामत बनाया है जिनसे वह बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने आम शुरा के तर्ज सुखन पर अपनी नज़मों की बुनियाद किसी भोंडे मुब्तज़िल लतीफ़े या नाकाबिले फ़हम व गुमान वाकयात व हादसात पर नहीं रखी। यही सबब है कि पेशकर्ता वाकई हकीकी किरदार मुतारफ और ख्यालात महज तसव्वुराती नहीं लगते बल्कि खुदरा पौधे की तरह अपने वजूद का वाजिब जवाज भी रखते हैं।
2: वाही किसी मुरब्बी मुअल्लिम मुबल्लिग नासिह और कायदे जमा की तरह डांटते फिटकारते और नसीहतों की बौछार नहीं करते। उन्होंने हिकमत अमली से काम लेकर मुआशरे के नुक्कड़ों और चौराहों पर कलम साख्ता तिलस्मी आईने को मखसूस जाविये से नसब कर दिया है। अफराद व मुआशरा के हकीकी रूप के साथ साथ नाजरीन को अपना चेहरा भी साफ नजर आ जाता है।
0: खुफिया मूवी कैमरे की आंख से बच निकलना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन निगाह वाही की जद पर ना आना फर्द मुआशरा की बस की बात नहीं। नकाद मुहक्किक तबसरा निगार खादिम अदब इक्तबासाती अदीब मकतूबी अदीब हजरत कातिब शायर शायर मैखार शायर बिसियार गो बेचारा शायर बानियान मुशायरा से इंटेलेक्चुअल एडिटर लीडर प्लीडर प्रोफेसर बड़ा साहेब मुल्ला वफाती ही हदफ वाही नहीं बने।
1: आईने वाही हसाते हसाते चुपके से एहसासी गौर व फिक्र मुट्ठी में थमा देता है।
2: मौजूद का तनवह रजा नकवी वाही की फनी खसूसियात की एक अहम खसूसियत है। इनकी बेशतर नज़में जहन में फांस की तरह चुभकर बेकली पैदा कर देती हैं।
0: वाही का तख्लीकी शाहकार उनकी तवील ड्रामाई नज़्म शरिस्तान वाही है। दरअसल शहरी लिबास में ये एक मुकम्मल नावल है। वाही का तसव्वुराती शरिस्तान शद्दात की जन्नत नहीं बल्कि हकीकत का निगार खाना है जिसकी सैर के बाद ज़ुबान तहसीन से आफरी निकलती है। उनकी गैर मामूली अख्तराई कुवत तखयल की बुलंद परवाजी ख्यालात व वाक़यात का तनव ड्रामा की फन से वाकफियत और माहिराना बंदिश अल्फाज का कायल होना पड़ता है। यह एहसास भी होता है कि वाही इंसानी नफ्सियात के वाकिफकार हैं। नफ्सियाती बारीकियों को निगाह में रख कर फर्द व मुआशरा की दुखती रगों पर हकीम वक्त की तरह उंगली रखना भी जानते हैं। सरकारी मुलाजमत की लक्ष्य

0: मन रेखा की दायरे में रहकर उन्होंने बड़ी बेखौफी से फर्द व समाज और सरकार को उनके कारनामों के साथ पसे चिलमन ला खड़ा किया है।
1: शेर सताने वाही को वाही ने भी अपना तख्लीकी शाहकार तस्लीम करते हुए इजहार अफसोस किया था कि अहले नजर से उन्हें खातिर ख्वाह दाद नहीं मिली। नबीरे शादे सुल्तान अहमद बहजाद फातिमी ने एक दिन दौरान अगस्त में इस ख्याल का इजहार किया कि शेर सताने वाही या खिदमात वाही के एदम एतराफ का शिकवा लाहासिल है। गालिब ही नहीं शाद अजीमा आबादी का भी बिला आखिर यह कहना पड़ा

अभी आप समाप्त कर रहे थे ये उर्दू फीचर रज़ा नकवी वाही, पेशकश थी कमाल जाफरी की और तहरीर थी सामीन डॉक्टर शाहिद जमील की। आइए अब अगली पेशकश बज़्म मौसीकी की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है ये गज़ल अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

0: सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में पेश इस गज़ल के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संकेत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, गीत के बोल जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

0: जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को हमने लिया था फिल्म दस्तक से। आवाज उदित नारायण की, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दिलवाले फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम।

इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आज की हमारी पहली सभा को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज सुनते हैं वसुंधरा कोमकली के स्वर में राग रामकली।

अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा कोमकली के स्वर में राग रामकली, हमारे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं। फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह

0: पचकर 30 मिनट पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

ये गीत है फिल्म ढाई अक्षर प्रेम से लिया गया। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और साथ दे रहे हैं अभिषेक बच्चन।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे

फिल्म कोई मिल गया का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार तो होना ही था से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

फिल्म सैनिक का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म राजा से लिए गए इस गीत को।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत हमारे क्षणिक के दरभंगा केंद्र से। भी आप सुन रहे थे इक्का राजा रानी से लिए गए इस गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में। और अब वक्त हो रहा है हमारी श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए अब चलते हैं, मिलते हैं आपकी रेडियो सखी श्वेता से कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। मैनो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास से जुड़ा है। विषय है, महिला सक्षमता क्यों आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। यही कारण है कि महिला सक्षमता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। बहनों, महिला सक्षमता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही नहीं बल्कि इसका मतलब है कि हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के समान अधिकार भी मिले। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे क्षेत्र विज्ञान का हो, खेल का हो, सेना का हो, प्रशासन, शिक्षा, कृषि या व्यापार का ही क्यों ना हो, हर जगह महिलाएं अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। ये बात साबित करता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन आज भी कई महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर, रोजगार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं को दूर करना हम सभी का फर्ज है। हमें बेटियों की शिक्षा की प्राथमिकता देनी होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर देने होंगे और उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करनी होगी। जब परिवार महिलाओं के सपने का सम्मान करता है तो वो न केवल अपना जीवन बदलती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने महिला सक्षमता का अर्थ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं बल्कि समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त करना है। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम नारी संसार के एक छोटी मुलाकात अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के विषय पर। आज का समय डिजिटल युग का समय है। बच्चे अपना अधिकतर समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर बिताते हैं। ऐसे में पुस्तक पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पुस्तकें ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। पुस्तक पढ़ने से बच्चों के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले यह उनके ज्ञान को बढ़ाता है। जब बच्चे अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें नई नई जानकारी मिलती है और उनकी सोच का दायरा बढ़ता है। उनमें डिसिप्लिन आता है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की चाहत बढ़ती है। दूसरा, पढ़ने से बच्चों की भाषा और शब्दावली में सुधार होता है। वे सही तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं।

यह उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। कहानियों के पात्र, घटनाएं और स्थान बच्चे के मन में एक नई दुनिया रचते हैं। इसके अलावा पुस्तक पढ़ने से बच्चों में एकाग्रता और धैर्य विकसित होती है। इसके अलावा पुस्तक पढ़ने से बच्चों में एकाग्रता और धैर्य विकसित होता है। आज के समय में जहां ध्यान भटकना एक बड़ी समस्या है, वहां पढ़ने की आदत बच्चे को स्थिर और केंद्रित बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि हम बच्चों में यह आदत कैसे विकसित करें। तो इसके लिए सबसे पहले माता पिता को स्वयं पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो अपने से बड़े को, माता पिता को और पारिवारिक सदस्य को देखते हैं, या उनके साथी सखा सहे साथी जिनको देखते हैं पढ़ते हुए और देख देख कर सीखते हैं। तीसरा, उन्हें रोजाना कुछ समय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे स्कूल में पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाकर, कहानी सुनाकर और पढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित करके बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट जगा करके। और तरह तरह की कहानियाँ होती हैं, इन्हें बता करके उन्हें पढ़ने की ललक जगा सकती हैं। माता पिता भी उन्हें तरह तरह की कहानियों की किताबें ला करके बच्चे को दें पढ़ने को, तो पढ़ने की आदत उनमें विकसित होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे समझदार, रचनात्मक और सफल बने, तो हमें उन्हें पुस्तकों से जोड़ना ही होगा। अंत में मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगी कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करें और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखें। धन्यवाद।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

बहनों, जब भी समुद्र में भयंकर तूफान या चक्रवात आता है तो तटीय इलाकों में तबाही मच जाती है। लेकिन जानती हैं, समुद्र के किनारे एक ऐसी कुदरती दीवार रखी है जो इन लहरों के गुस्से को खुद पर झेल लेती है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं मैग्रोव वनों की। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मैग्रोव दिवस मनाया जाता है। ये कोई आम का पेड़ नहीं है, ये वो जादुई पौधे हैं जो खारे पानी में भी शान से मुस्कुराते हैं। इनकी उलझी हुई मजबूत जड़ें समुद्र की मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे जमीन का कटाव रुकता है। अगर मैंग्रोव ना हो तो समंदर की लहरें हमारे तटीय शहरों को निगल सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसानी लालच की वजह से ये एक रक्षक आज खुद खतरे में है। फैक्ट्रियों का कचरा, शहरीकरण और झींगा पालन के चक्कर में हम इन जंगलों को तेजी से काट रहे हैं। याद रखिए, मैंग्रोव आज जंगलों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है तो इन्हें बचाना ही होगा। हमारे भारत का सुंदरवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया की धरोहर है। बहनों, जब कभी भी आप किसी तटीय इलाके में जाएं तो वहां कचरा न फैलाएं और स्थानीय लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें, क्योंकि मैग्रोव सुरक्षित है तो हमारे किनारे सुरक्षित हैं। तो चलिए, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से।

सौदागर सौदागर श्रोता बहनों, अभी आप सुन रही थी सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म सौदागर का ये गीत। तो चलिए, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम बनाएंगे लाजवाब घेवर। सही बैटर, हल्की चाशनी और मलाईदार टॉपिंग के साथ आप आसानी से बाजार जैसा स्वाद घर पर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए जो सामग्री उसे नोट कर लें। घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप घी, 2 कप के लगभग मैदा, बर्फ के टुकड़े 3-4 पीस और पानी आवश्यकता अनुसार। इसके साथ ही हमें चाहिए डीप फ्राई करने के लिए घी या तेल या रिफाइंड, जो भी आप खाती हों। चाशनी के लिए हमें चाहिए शक्कर 1 कप, पानी आवश्यकता अनुसार, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच और इसकी मलाई तैयार करने के लिए हमें चाहिए 3 कप फुल क्रीम दूध, शक्कर 1/4 कप, इलायची के कुछ दाने महीन दरदरे पिसे हुए, कटे हुए बादाम और पिस्ता और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे कि हम लोग घेवर को सजाएंगे। तो इसे बनाने के लिए बहनों, सबसे पहले एक बड़े बर्तन में घी लें और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से फेंटें। इससे घी हल्का और क्रीमी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाएं। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से ठंडा पानी डालते हुए पतला चिकना घोल तैयार करें। अब एक अलग बर्तन में चीनी और पानी डालकर गैस पर रखें, जिससे कि चाशनी बननी शुरू हो जाएगी। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए और चाशनी हल्की सी तैयार हो जाए, तब उसमें इलायची पाउडर मिला दें। बहनों, ध्यान रखें कि हमेशा गहरे पैन में तेल को गर्म करें और जब तेल गर्म हो जाए, तब आप 1/4 चम्मच घोल को धीरे धीरे से बीच में डालें। जैसे ही आप घोल को घी में डालेंगी, उसमें जालीदार छेद जैसे बनने लगेंगे, जो घेवर की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इसी तरह से डाल करके आप जितने चाहें उतने घेवर तैयार कर सकते हैं। और घेवर जब सुनहरा कुरकुरा हो जाए, तब उसे बेहद सावधानी से बाहर निकाल लें। कई बार ऐसा होता है कि घेवर निकालते समय टूट भी जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि निकालते समय हमें विशेष सावधानी अपनानी है। फ्राई होने के तुरंत बाद इसे तैयार चाशनी में डुबो दें। अब एक पैन में दूध डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब दूध गाढ़ा होने लगे, तब उसमें शक्कर इलायची डाल दें और लगातार चलाती रहें, ताकि मलाईदार मिश्रण तैयार हो जाए। जब यह हल्का ठंडा हो जाए, तो इसमें इसे आप बाहर निकाल लें और घेवर पे अच्छी तरह से फैलाएं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप गर्म दूध को इसके ऊपर डालती हैं, तो घेवर नीचे से बिल्कुल पिघल जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए जब तक दूध ठंडा ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर ना डालें। और अंत में आप इसे कटे मेवों, गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं। तो श्रोता बहनों, ये देखने में तो बड़ा खूबसूरत होता है, साथ में खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है, बेहद स्वादिष्ट होता है। और घर में जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आता है। तो कोशिश करें कि इसे आप घर में बनाएं। और कुछ चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना होता है, जैसे कि बर्फ़ के जो टुकड़े हम डाल करके अच्छे तरीके से घी को फेंट रहे हैं, तो लगातार उसे चलाना है। और ये चलाते वक्त ध्यान रखिए कि उसे क्लॉक वाइज आप चलाएं, ये नहीं कि उल्टे हाथ में घुमाएं, तो इससे जो भी उसमें खमीर उठता है वो टूट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो मेवा हम इसमें डाल रहे हैं, मेवे की हवाई काटी जाती है, यानी कि पतली पतली परत काटी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब खीर बनाते हैं या किसी भी तरीके का कोई पकवान बनाते हैं, तो मेवे को तोड़कर या कूटकर या कभी कभी मिक्सी में पीस कर भी डाल देते हैं। तो घेवर बनाने में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसी किसी भी प्रक्रिया को नहीं अपनाना है। आप बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको मेवा पसंद है, उसको हाथ में लें और चाकू से महीन महीन लंबा लंबा काटे, तो हवाई जैसा कटता है, उसको हवाई काटना कहा जाता है, तो हवाई जैसा काटें। ये मेवे पतले होते हैं, देखने में बेहद हल्के होते हैं और जब इससे पकवान को सजाया जाता है, तो पकवान बहुत सुंदर लगता है। आप इससे तरह तरह की डिज़ाइन भी पकवान के ऊपर बना सकती हैं। इसके साथ ही जो सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसे कि हम लोग बाद में घेवर के ऊपर या फिर कभी कभी खीर में भी डालते हैं, तो वो पंखुड़ियाँ बिल्कुल लाल होती हैं, उनको हल्का सा हाथ से आप दबा दें ताकि वो जरा सी टूट जाए, तो उसको जब आप ऊपर से डालेंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में

होता है, जैसे कि अभी हम लोग दूध गाढ़ा कर रहे थे, तो दूध गाढ़ा करते समय हम लोगों को लगातार दूध को चलाते रहना है। अगर दूध को चलाना बंद कर देंगे तो दूध नीचे से लग जाएगा या फिर उसमें मलाई नहीं आएगा। और

0: किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30

0: प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, वक्त हो रहा है हमारे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम आपकी पसंद का, आपके रेडियो दोस्त चंदना के साथ।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आनंद लेते हैं आपके पसंदीदा गीतों का। मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना आप सभी श्रोताओं का स्वागत कर रही हूं आपके कार्यक्रम आपकी पसंद में। आज शनिवार है और हर शनिवार की भांति ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ मैं आ गई हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफ़र का इस प्यारे से गीत के साथ। ये गीत है फिल्म जीना मरना तेरे संग से और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं सेक्टर 18 जगधारी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी और पलोमा डी डॉक्टर ईशानी। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम, इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहाँ, डब्लू अक्रम नूरजहाँ, वली अक्रम नूरजहाँ, अल्लाह अक्रम नूरजहाँ, राजनंदा गांव से याकूब आसनामा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी। इसी गीत की पसंद आई है केटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी

प्रांजल राय, साथ ही साथ गाजीपुर शेरपुरा कला से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जीना मरना तेरे संग से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की, तो सुनते हैं आपकी ये पसंद।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत, अगली पसंद जो आई है हमारे। ये गीत है, सुनना चाह रहे हैं फिल्म आतिश से, और आवाजें हैं अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की, और ये सुनना चाह रहे हैं ग्राम पेंजनिया जिला जलौन से सतेंद्र कुमार जंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक। इसी गीत को सुनना पसंद किया है ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंज राजारिन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत बैठना बलकरण अंजनी वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौटदा सारा गांव से सुजान वर्मा, शहद्र वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा। इसी गीत को सुनना पसंद किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आतिश से जॉली मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाज़ में।

ये गीत है फिल्म दिल से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं रामपट्टी गौसानगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जगदम्बे जगदेव प्रसाद। इसी गीत को पसंद किया है लालमता सुदामा नगर रटलाई जिला जलवाड़ा राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान और रानी कुमारी। साथ ही साथ फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा और लल्लू सुर गनैया। तो आइए सुनते हैं ये आपकी।

तो फिल्म जीत का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे सदा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाहिजाही, मेहराज जहां, बेडी से हुकुम कर्माकर, सुमिता कर्माकर, हार्दिक कर्माकर, प्राची कर्माकर, तनु कर्माकर, नाज बंसल, महसौल सीतामढ़ी, बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, समीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, रुमिदा वजीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख,

अप्रैल बिहार से मोहम्मद आसिफ खान बेगम निखत परवीन नूर जहां महसौल से मेरा नाज अहिबा नाज अरहान बाबू हमजा बाबू और आइए अब अगली पसंद की ओर चलते हैं। तो श्रोताओं आप अभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का और मैं आपकी रेडियो दोस्त आपकी चंदना आपको सुनवा रही हूँ आपके पसंद का गीतों को। तो इस सफर में चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत जो है फिल्म फर्स्ट लव लेटर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की और इस प्यारे से गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं पटेल नगर बलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया गीता रानी जाजुरिया गगनदीप जाजुरिया और बेबी आरजू जाजुरिया। इसे गीत को सुनना पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या अभय नंदारा परमानंद आर्या पंकज प्रमोद रोहित मोहित साथ ही साथ आदर्श नगर मलोट से विराज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी सौरभ साइना शर्मा और नरेंद्र शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता निगम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म फर्स्ट लव लेटर।

फिल्म सलामी का ये गीत आइए आपको सुनवाते हैं। और इस गीत को सुनना पसंद किया है बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अंजू अर्जुन गवेंकर, धीरज गवेंकर, जतुका कृष्णपुर से आलम दिलकर, शबाना राज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, साथ ही साथ महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, लोक कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और

तो श्रोताओं, आप हमें इसी तरह से खत लिखते रहेंगे और पत्रों के माध्यम से हम आपको सुनवाते रहेंगे आपको आपके पसंदीदा गीतों को। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार, 846004। तो अगले शनिवार तक दीजिए अपने रेडियो दोस्त चैनल

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आज आह्वान किया है। बंद को राजद समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य भर में सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। राजधानी पटना में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पटना के बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11,464 करोड़ रुपए की लागत से 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। साथ ही वेटनरी कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत एसी और नॉन एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज पटना में पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास एक यात्री बस और टैंक लॉरी की टक्कर में बस पर सवार 22 लोग घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज सासाराम मॉडल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने विभिन्न मामलों में अभियुक्त 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ की द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। देर शाम मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत आज नई दिल्ली में CJP के नुमाइंदा वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। यह मीटिंग दोपहर 3:30 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। मीटिंग में इम्तहान के निजाम में सुधार और पेपर लीक के वाकयात को रोकने के तदाबीर पर नुमाइंदों के मुतालबात पर बात होगी। इससे पहले मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के नुमाइंदा वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तहान के निजाम में सुधार से मुतल्लिक से CJP की मांगों को संजीदगी से लिया है। नीट पेपर लीक मामले के सिलसिले में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों समेत

श्रोताओं, रोजगार सूचना में आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुल पद 395, आवेदन शुरू करने की तिथि 21/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक, अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष हो, योग्यता बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .bank.in पर जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक कुल पद 535, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026, न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल हो और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026, कुल पद हैं 6557, आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 33 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च IGCAR कुल पद 200, आवेदन शुरू होने की तिथि है 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 19/8/2026। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा न्यूनतम उम्र हो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। अधिक जानकारी वेबसाइट www.igcar.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। NFR रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट कुल पद 6777, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक, न्यूनतम उम्र सीमा हो 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा हो 24 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr.requirement.in पर जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कुल पद 163, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष हो। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं रोजगार सूचना।

0: कैसी है?
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और CJP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई।

0: इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जर्फ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य

0: और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आइए श्रोताओं फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

उमर शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म मीरा का मोहन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन चले ससुराल से कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की ही आवाज़ में।

फिल्म सैनिक का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी राधा पौडवाल और कुमार शानू की। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, वक्त हो रहा है हमारे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:21 हो रहे हैं, यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंग इज किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान, सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: डॉक्टर तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा, कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? डियर सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
4: हाँ?
3: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
2: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
2: ओहो जनाब अख्तर साहब, ही 100 टाइम
4: आधा वर्ष मियाँ।
2: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातम पुरसी करने चला आया था।
2: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातम पुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातम पुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
4: तो और करता भी क्या है?
2: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
3: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
2: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
4: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दे।
2: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
3: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का

0: इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा।
1: सचिन, ये भी गौर तलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
2: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो। तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
0: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
2: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
0: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
2: चलो चलो।
0: रितु, क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
0: बारा?
4: जी सर।
0: दो कोल्ड कॉफी।
4: बोले सर।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
0: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
0: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
0: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
3: अच्छा
0: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
0: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
0: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
3: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
0: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
3: फिर वही बात।
0: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
3: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
0: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
3: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
0: साल दो साल, ये सजा क्यों?
3: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूं?
4: सर बिल।
3: तब तक बिल चुकाओ।
5: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
6: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
5: आसान होता तो तुम्हें यह नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
6: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
5: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
6: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
5: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
6: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे, अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
5: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं

0: है?
1: जी।
0: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
1: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
0: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
1: वो क्या मेजर?
0: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंतीलाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट एंड दैट मीन्स मनी।
1: ऑफ कोर्स।
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यहीं था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ,
3: है
2: वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
3: मैं समझा नहीं।
2: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता, जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता।
2: लेकिन वही रीता अब तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
3: हूं। नहीं, वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी, नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है, स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
2: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
3: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
2: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
3: अच्छा चलो
2: चलो। हरीश ऐसा?
3: नहीं नहीं सचिन।
1: हेलो हरीश। हाय सचिन।
3: हेलो हेलो।
1: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र, MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
3: हाउ डू यू डू?
4: हाउ डू यू डू? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अब तक साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
1: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है
2: भाई। आज माफी चाहता हूँ मिस।

0: एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा।
1: अच्छा
0: ओके बाय
2: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
3: मैं
4: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ जाना है?
2: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
3: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
4: दैट्स गुड।
2: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
4: बैठिए। बैरा बैरा।
5: जी साहब।
4: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
2: जी नहीं।
4: तुम कुछ लोगे हरीश?
3: मैं कुछ नहीं लूंगा।
4: ओके बस तीन गर्म कॉफी लाओ बैरा।
5: अभी लाए सर।
4: हरीश अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
3: दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन।
2: तो साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
4: भाई ऐसी बात नहीं है।
5: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
4: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
1: क्या हुआ?
4: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
3: चलो चलो हम भी चलते हैं।
4: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
2: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
3: मैं छोड़ाऊंगा।
4: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
3: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
4: ओके
6: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
2: क्यों, क्या हुआ पापा?
6: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
2: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
6: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
2: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
6: हरीश कितना बहक सकता है ये शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
2: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
6: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था। तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका। वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
2: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
6: जब से अलका जैसी बच्चल लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
3: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की।
2: मैं रो कहां रही हूं?
3: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
2: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
3: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
2: पापा पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती, उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था, हरीश उनका प्रिय छात्र था।
6: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
2: पापा आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
6: हाँ शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है।

न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कांत कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर रखी। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खुशियां सुलझाने से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते हो।
0: जिंदगी में कुछ लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो। इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
1: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
0: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
1: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: अरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है?
1: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच पूछते हूँ।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक के एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
1: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीनी की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
1: शट अप,
0: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
1: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
2: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
2: क्यों हरीश, क्या बात
1: है? मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
2: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
1: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बकता है मेजर।
2: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
1: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है।

0: आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
1: अरे
0: आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं। अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
1: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे
1: मेजर,
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की
1: मेजर।
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
0: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
1: हाँ, मैं जलील हूँ लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
3: Uh-huh.

0: कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ?
2: खून?
1: अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चली आओ। अच्छा
0: अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारती आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
2: जी
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी, जी।
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कसूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवीं पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल।
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छठा मैं छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला, एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
2: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है
3: जी, जी।
2: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग चार या छह पीढ़ियों से, अब तो कहीं छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहां से
3: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की? कलकत्ता रेडियो से। वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
2: अच्छा
3: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
2: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ
3: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में
2: अच्छा
3: कुछ साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923

0: चौबीस पच्चीस में वो चले गए लाहौर, वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
1: जी,
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का।
1: जी जी
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था, तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से
1: जी।
0: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया जी,
1: बिल्कुल,
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास चुरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास,
0: भरत व्यास जी है, गुलाम गुलाम मोहम्मद जी,
1: गुलाम मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही है।
1: जी,
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी,
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत, और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना। तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है, कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक, अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर अर ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारी दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी।

0: शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ।
1: जी,
0: क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
1: जी।
0: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि
1: बिल्कुल।
0: हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पे संगीत बदलता है,
1: बिल्कुल।
0: वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो
0: जो
1: वही।
0: हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज़ छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई।
0: क्रांति आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: देखिए फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं
1: हाँ
0: आपका।
1: हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था,
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा, अंधेरी अगर आना हो तो बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे या
1: हाँ।
0: कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी।
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ एज ए मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते 3 4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीज़ें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला तो वो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी
0: लेने
1: जी
0: जाएंगे या
1: जी
0: पैसे दो
1: बिल्कुल
0: के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल।
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर 1 है, इंडिया के एक माने हुए
1: जी
0: परकशंस हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला।

0: कोंगो बोंगो तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं
0: क्योंकि
1: नहीं जो सच्चाई
0: जो
1: है।
0: उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोले यार अपन संगीतकार बन जाएं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल
1: कमाई
0: जाता था।
1: जी।
0: बोले ये खामोखा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे
1: अच्छा गीतकार।
0: गीतकार, तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद भोपाली साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर 2 दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा। मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे,
1: हम्म।
0: बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है, बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तू आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे म्यूजिक डायरेक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं
1: जी
0: हमारी,
1: बिल्कुल।
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4, 4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे।
1: जी
0: तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा एक लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला
1: जी
0: भाई पिक्चर मिल गई। तो
1: जी
0: आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए,
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली
0: सुरमा
1: थी।
0: भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: जी जी
0: मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे।
1: हाँ
0: तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते,
1: जी
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक पहले।

0: प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कू आई लव यू तू नाक धुन धुन तू नाक धुन तुम
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको दो तीन महीने हो गए अब ये गाना बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है?
1: क्या है
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो इसलिए पसंद है कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे,
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं, ये 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता
0: हा,
1: है
0: हा, हा।
1: तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी।
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला, यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, ये ड्रीम था, सपना
0: ड्रीम
1: था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिना के दिन दिन तीन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
0: जी।
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त स्ट्राइक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से

0: को बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा।
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे तुम, चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा, ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या रहा? जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद अकेले जा, ताक दिन आगे दिन। बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोला सजना वे मेरे नींद अकेले जा तक, तो मैं बोला ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लौंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक महान,
0: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी, तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजना।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते दीदी के पैर छुए, माफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या? गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: से दिल लगी, सुना उन्होंने मोहम्मला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: हाँ
0: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो, दिल
1: दिल
0: है
1: है
0: तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने 1 टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का एक ही समय में 4 गाने गाए हूँ। ये मेरे लिए बहुत
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती है तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा अब से लेकर 5:40 तक हमारा और आपका साथ। करेंगे बातें, सुनेंगे लोकगीत और गज़लें। इसके अलावा समय मिला तो आपको हम सुनवाएंगे गैर फिल्मी गाने भी। और आपको साथ ही बता दें कि 5:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पहले थोड़ी बातचीत आपसे हम कर लें दोस्तों। ये जीवन जो है ना, ये मनुष्य का जीवन है। हम सभी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमारा जीवन अनमोल है। जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कई बार खुशी का माहौल बनता है तो कई बार समस्याएं आती हैं। और जब समस्याएं आती हैं तो अचानक लगता है कि हम चारों ओर से समस्याओं से घिर चुके हैं। और कहते हैं ना कि मुसीबत हमेशा साथ आती है, अकेले नहीं आती। तो ये होता है जब एक तरफ से हम कष्ट झेलते रहते हैं तो अनेक कष्ट हमारे आसपास आ जाते हैं, हमारे सामने दस्तक देने लगते हैं।

0: ऐसे में एक गुण हम में और आप में होना चाहिए, वो ये कि हम ये मान लें कि ये सब होना ही है। तो ये सब जब होना है और उसके बारे में हम मान लेंगे तो फिर हमारी समस्या का आधा समाधान वही हो जाएगा, आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर हम मान लेंगे कि ये सब होना ही है। और दूसरी बात, उनके साथ रहते हुए, उन समस्याओं के बीच उनसे जूझते हुए जीवन जीना सीखें। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा और आपका जीवन किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाने से बच जाएगा। जो होना है वो होकर रहेगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, फिर हमें उससे डरना क्या। दोस्तों, इन बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, हमने जैसा कि आपसे कहा, सुनेंगे लोकगीत और गज़लें भी, तो पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये देवी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत, और अब आपको एक और लोकगीत सुनवाते हैं। कलाकार हैं शिवानी गोला।

0: काफी बातें बताई हमने रोचक तथ्य में, अब सुनाते हैं अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ही है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे फिजिक्स से सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट समझना काफी इंटरेस्टिंग लगता था। बायो और केमिस्ट्री मुझे स्टार्टिंग से थोड़ी हार्ड लगती थी, लेकिन मैंने उन सब्जेक्ट से भागने की जगह उन पे ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। बहुत लोग पूछते हैं कि थ्योरी ज्यादा पढ़े या न्यूमेरिकल्स, मेरे हिसाब से हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में थ्योरी और एनसीईआरटी स्ट्रांग रखो और फिजिक्स में जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए सिर्फ रटना इनफ नहीं होता है। डॉक्टर बनने की मोटिवेशन भी मुझे सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा से ही मिली। उनका सपना था कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं और उनका नाम रोशन करूं, और मेरे पूरे ब्लड लाइन में कोई डॉक्टर नहीं है, सो एक सपना मेरा वो भी था। जब पढ़ते पढ़ते मैं थक जाता था, डिमोटिवेट हो जाता था, तो बस उनके बारे में सोचता था, फिर मुझे दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। मैं ज्यादातर टाइम एमसीक्यूज करता था और 2 वीक में एक मॉक्स दे देता था। आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी भी हार मत मानिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने मिस्टेक से सीखिए। जब गोल क्लियर हो और फैमिली की सपोर्ट साथ हो तो कोई भी एग्जाम इम्पॉसिबल नहीं लगता। और आज के जमाने में, आज के टाइम पे यूथ का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है फोन। सो मैं सबसे कहूंगा, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप अपना फोन अवॉइड करिए। एक साल फोन टच नहीं किया। इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी महीने में एक बार बात करता था, वो भी 30 to 60 minutes ओनली। सो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। एंड थैंक यू और ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सपने जरूर पूरे करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अपने नाम के आगे डॉक्टर का टैग भी तो लगाना है ना।
1: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ, हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी खराद कला के बारे में। खराद कला लकड़ी को खराद मशीन पर तराश कर सुंदर और आकर्षक कलात्मक वस्तुएं बनाने की एक पारंपरिक कला है। इसमें लकड़ी को मनचाहे आकार में ढालकर उस पर लाख और प्राकृतिक रंगों से नक्काशी और पॉलिश की जाती है। ये कला अपनी विशिष्टता, इतिहास और तकनीक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, कास्ट खराद कला के माध्यम से खिलौने, रसोई के बर्तन जैसे बेलन, चौकी, ओखली, सजावटी सामान, शतरंज की मोहरे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये शिल्प मध्य प्रदेश के श्योपुर और सीहोर और राजस्थान के उदयपुर में बहुत प्रसिद्ध है। उदयपुर
2: राष्ट्रमंडल खेलों में दबदबा दिखाया। शुक्रवार को पुरुष मुक्केबाजी की 55 केजी स्पर्धा में जादूमणि ने मेजबान स्कॉटलैंड के एसनकुलेन को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
3: और दोस्तों, आज शनिवार है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जिसकी अगुवाई कप्तान श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। मुकाबले में अपनी जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करते हुए जिम्बाब्वे के विरुद्ध अजय बढ़त हासिल करने की जो हमारी भारत की टीम है वो करेगी। और आपको बता दें कि अभी स्कोर जो है

103 रन बन चुके हैं इंडिया के 3 विकेट के नुकसान पे, लगभग 11 ओवर हो चुके हैं। और ईशान किशन जो है अभी बैटिंग कर रहे हैं 43 रन नबात। और दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो से पलक मुच्छल और उनके साथी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग आज की बात में डूबने से बचाव के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी से संबंधित आज हमारा आज का सवाल है कि अगर आपके आसपास अगर पानी में डूबने की खबर मिलती है तो आप आपातकालीन सहायता के लिए किस नंबर पर सूचित करेंगे। एक बार सवाल फिर से सुन लें, अगर हमारे आसपास डूबने की खबर मिलती है तो आप आपातकालीन सहायता के लिए किस नंबर पर सूचित करेंगे।
0: बिल्कुल, और अपने मीन्स हमारे सवाल का जवाब लिखकर हमारे मेल आईडी पर जरूर भेजें, या फिर आप पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है feedback@patna.com, या फिर से आप हमें अपने पोस्ट के माध्यम से भी अपने उत्तर भेज सकते हैं। श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना, पिन कोड 801। तो स्टूडियो की घड़ी कर रही है अभी इशारा, तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे गजलें, क्रमशः कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और गुलाम अली। आज का ये कुसुम कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त होता है। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं नई फिल्मों के गाने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन, आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपने क्रमशः सत्य प्रेम की कथा, डंकी, चिड़ियाखाना और रक्षाबंधन फिल्म के गाने सुने। अब फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय

0: वाले मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत होगा झरोखा। झरोखा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा सुनिएगा। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा होगी बरसाती प्याज की उन्नत खेती। 7:05 पर हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। इसके अलावा समसामयिक कृषि कार्य और मौसम संबंधी बातें भी होंगी। पर साप्ताहिक विधानमंडल समीक्षा हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। 8:00 इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे।

8:15 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। साढ़े 8 बजे होगा लोक गीतों का कार्यक्रम। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 बजे कार्यक्रम विज्ञान भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। बता दें आपको, ये दोनों ही कार्यक्रम यानी 9:30 बजे विज्ञान भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी दरभंगा से पेश है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत। गीत है सुरभि निकुंज।

0: आप सुन रहे थे विनय कुमार झा के स्वर में ये विद्यापति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुने क्रमशः कुंज बिहारी मिश्र, गौतम मिश्र और विनय कुमार झा के गाए विद्यापति गीत। इसके साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कुछ क्षणों में मैथिली संवाद प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद, संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आई अपन पद सँ इस्तीफा दऽ देलनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पठाओल गेल अपन त्याग पत्र में श्री प्रधान जनौलनि जे पछिला 10 दिनक घटना सँ हुनक मन व्यथित छल और ई हुनक लेल व्यक्तिगत प्रतिष्ठाक विषय नहि अछि। ओ जनौलनि जे भारतक युवा शक्ति देशक सबसँ पैघ ताकत छथि और युवा सबके भ्रमक कुचक्र मे नहि फंसय देल जायत। श्री प्रधान जनौलनि जे ओ त्यागपत्र एहि लेल देलनि जाहिसँ जंतर मंतर और देश में जे अखन स्थिति बनल अछि ओकर राष्ट्र विरोधी ताकत लाभ नहि उठा सकय। त्यागपत्र में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग लेल आभार जतौलनि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनौलनि जे संसद में बिताओल गेल हरेक दिन, घंटा, मिनट और हरेक पल लोकतंत्र के मजबूत बनेबाक लेल होयबाक चाही। नव दिल्ली में आई राज्यसभाक नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सब लेल आयोजित दू दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमक उद्घाटन समारोह के संबोधित करैत ई जनतब देलनि। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी आंदोलन वापिस लेबाक घोषणा कऽ देलक अछि। नव दिल्ली में केंद्र सरकार दिस सँ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंहक सोझा सीजेपीक प्रतिनिधि सब आंदोलन समाप्त करबाक घोषणा कयलनि। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार दिस सँ जनाओल गेल अछि जे आंदोलनकारी सभक उचित मांग के मानि लेल गेल अछि। सीजेपीक प्रतिनिधि सब प्रदर्शनकारी सब सँ जंतर मंतर सहित सब ठाम सँ शांतिपूर्वक लौटबाक लेल जनौलक अछि। नीट पेपर लीक मामला के लऽ कऽ वामपंथी छात्र संगठन सहित कतेको छात्र संगठन आई बिहार बंदक आह्वान कयलक। राजद सहित कतेको विपक्षी दल सब सेहो बंद के अपन समर्थन देने छल। बंद के देखैत राज्यभर में कड़गर सुरक्षा व्यवस्था रहल। एही बीच सब संवेदनशील स्थान, रेलवे स्टेशन और सरकारी प्रतिष्ठान सब पर पुलिस और क्विक रिस्पांस टीमक तैनाती रहल। राजधानी पटना में अर्धसैनिक बलक कतेको कंपनी के सेहो तैनाती कयल गेल। हमर संवाददाता सब जनौलनि अछि जे कतेको जिला मुख्यालय में छात्र सब अपन मांग के लऽ कऽ विरोध प्रदर्शन कयलनि। किछु ठाम प्रदर्शनकारी छात्रक पुलिसक संग झड़प सेहो भेल। एहि बीच प्रदर्शनकारी सभक संग संग किछु पुलिस कर्मी के घायल होयबाक खबर भेटल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अगुवाई में एनडीए सरकारक 100 दिन पूरा भऽ गेल। एहि मौका पर पटनाक बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 11,464 करोड़ टाका के लागत सँ 2,476 विकास योजनाक शिलान्यास आ उद्घाटन कयलनि। एहि सँ राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी आ रोजगारक क्षेत्र में विकास के नव गति भेटत। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्री परिषदक कतेको सदस्य, विधायक, विधान पार्षद आ कतेको विभागक वरिष्ठ अधिकारी सब छलाह। ओतहि एक आन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आई पटनाक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ टाकाक लागत सँ बनल आधुनिक भवनक उद्घाटन कयलनि। संगहि वेटनरी कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ई बस सेवा में एसी आ नॉन एसी बस के हरियर झंडा देखाकर रवाना कयलनि। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दलक बैसक आई पटना में पार्टी कार्यालय में भेल। पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनक अध्यक्षता में बजाओल गेल बैसक में संगठन सँ जुड़ल कतेको

0: मुद्दा पर चर्चा कयल गेल। बैसक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आनो आन वरिष्ठ नेता सब रहथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम में देश आ विदेशक लोक सब सँ अपन विचार साझा करता। ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक 136वीं कड़ी होयत। कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सब चैनल, AIR न्यूजक वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कयल जायत। बाद में मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत। एहि प्रसारण के दोबारा राति 8 बजे सँ सेहो सुनल जा सकैत अछि। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आइ माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान चलाओल गेल। एहि बीच युवा सब के पोर्टल पर पंजीकरणक प्रशिक्षण देल गेल। मॉनसूनक सक्रियता सँ प्रदेशक बेसीतर भाग में बरखा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग आइ सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ आ औरंगाबाद सहित राज्यक उत्तर पूर्व आ दक्षिण पश्चिम भाग में कतेको ठाम तेज हवाक संग बरखाक अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि बीच किछु ठाम ठनका सेहो खसि सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनब वाला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तो भाई के दिशा नमस्कार संगे उगना भाई अहूँ के नमस्कार
1: नमस्कार सत्तो भाई। सत्तो भाई आज शनि दिन आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन के लेल झरोखा कार्यक्रम कार्यक्रम अंतर्गत आय एक हिनका लोकन के लेल भेंट वार्ता लयल छियन संग गीत नादक आनंद से हो ले मुदा ऐ सब से पहिने किछ दू टप्पी गप सप
0: कॉली।
1: सतो भाई हमरा लोकन जनैत छी जे जीवन में मूल आवश्यकता जे अछि ओ अछि भोजन वस्त्र और आवास।
0: आवास छै
1: सरकार अइ सबके ध्यान में रखैत कतेको प्रकारक योजना चललक अछि जाहि सँ हमरा लोकनि लाभ उठा रहल छी। तऽ आवास के दृष्टि सँ सरकार द्वारा एकटा योजना चलाओल जा रहल अछि ओ अछि प्रधानमंत्री आवास योजना। अइ योजना अंतर्गत सत्तु भाई शहरी आवास योजना आ ग्रामीण आवास योजना दुनू चलाओल जा रहल छै।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के एक प्रमुख योजना अछि। एकर मुख्य लक्ष्य अछि जे देश के गरीब आ जरूरतमंद परिवार के बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करायब अछि। ई योजना अहाँ कहबे के लिए जे मुख्य रूप से दू भाग में बटल गेल अछि, पहला अछि ग्रामीण क्षेत्र आ दोसर शहरी क्षेत्र। दुनू क्षेत्र के लेल अलग अलग राशि देल जाइत अछि। ग्रामीण आवास योजना मे अहाँ के मैदानी इलाका में यदि घर बनाबे के लेल से 1,20,000 आ पहाड़ी आ दुर्गम क्षेत्र में 1,30,000 धरि के आर्थिक सहायता देल जाइत अछि। उगना भाई, शहरी आवास योजना आ ग्रामीण आवास योजना मध्यम वर्ग के परिवार के किफायती लागत पर घर बनबे के लेल सहायता राशि देल जाइत अछि।
1: सत्तो भाई, इत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत से लाभुक लोकन के जिनका चयन कयल जाइत छन योजना से लाभ उठेबाक लेल त हुनका आर्थिक सहायता
0: देल जाइत
1: 1,20,000 रुपया देल जाइत छन। संग संग जे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत मकान बनेबाक लेल।

0: सुनल जाइत छथि लाभुक, हुनका लोकनि के आर्थिक सहायता 1,80,000 रुपया
1: देल जाइत छै।
0: ग्रामीण के रूरल कहै छी अंग्रेजी में, आ शहरी आवास योजना के अर्बन कहै छी। तो ई जे दुनू तऽ आर्थिक मदद भेल संगे, एहि लेल किछु पात्रता निर्धारित
1: छै। एहि के लेल अहाँ के पात्रता जे अछि ओ अहाँ के जरूरी दस्तावेज में, जेना कि आधार कार्ड भऽ गेल, पहचान पत्र भऽ गेल, आय प्रमाण पत्र भऽ गेल, बैंक के खाता विवरण भऽ गेल, शपथ पत्र भऽ गेल। कि शपथ पत्र में देश में कोनो अहाँ के पास पक्का मकान नहीं अछि, ओहन आवेदक के ई राशि उपलब्ध करायल जाइत अछि प्रधानमंत्री के द्वारा। कि
0: तात्पर्य ई जे कियो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभ उठायब, हुनका लोकनिक लेल ई पात्रता के शर्त होइत छन जे हुनका लोकनिक कतहु देश में अपन आवास नहीं होबाक चाहियन। त ई एकटा शर्त अछि जकरा हमरा लोकन के मानबाक चाही। संगे अइ आवास योजना के एकटा ई विशेषता अछि जे अइ अंतर्गत जे आवास बनैत अछि ओकर चाबी महिला के देल जाइत छै, कारण हुनकहि नाम सँ आवास आवंटित कयल जाइत अछि आ लाभुक के रूप में हुनके चुनल जाइ छनि, अथवा परिवार के जे संयुक्त रूपे सदस्य
1: हुनका नाम से चुनल जाइत अछि।
0: तऽ इहो एकटा विशेषता भेल।
1: आय योजना के तहत मिलय वाला जे सब घर में शौचालय भऽ गेल, बिजली भऽ गेल, पानि भऽ गेल, एकर आपूर्ति संगे रसोई घर के सुविधा उपलब्ध करायब अछि। कहबे के लिए उगना भाई जे आवेदक के नाम पहिने पक्का मकान कतौ नहि हेबाक चाही, ओहन आवेदक के प्रधानमंत्री द्वारा मिलय वाला प्रधानमंत्री आवास योजना देल जाइत अछि। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ सब भारतीय परिवार लऽ सकैत अछि जकरा पास भारत में रह के लेल अपना घर नहीं अछि। प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरुआत अहाँ के कयल गेल अछि 2015 में, जून में एकर शुरुआत कयल गेल अछि। एकर लक्ष्य अछि जे आर्थिक रूप से जे कमजोर आ निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाला जे आदमी छथि उनका लेल बेघर या कच्चा मकान में रहै छथि तो उनका लेल आवास उपलब्ध करायब।
0: तो स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनि, ई जे प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा चलाओल जा रहल अछि, ऐसा लाभ उठाबी आ पक्का घर बनाबी
1: छै।
0: आ सत्तो भाई आप की विचार?
1: आप हमर विचार है श्रोता लोकन के पहले एक गीत ना सुन
0: तो सुनल जाए। ये कौन गीत है?
1: ये है भगवती गीत अड़हुल के माला।
0: आ किनकर गावल है?
1: कुंज बिहारी मिश्र के।
0: तो सुनल जाए हिनकर गावल।

0: सतो भाई एखन हमरा लोकन कुंज बिहारी मिश्रक गाओल देवी गीत सुनलो आ आब हमरा लोकन सुनैत छी एकटा भेंट वार्ता।
1: हाँ हाँ, भेंट वार्ता के विषय किडनी के सामान्य रोग एवं उपचार आ भेंट वार्ताकार छे डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान, इनका से गप कर रहल छे अनिल कुमार कर्ण।
0: तो सुनल जाए दुनू गोटा के बीच ई भेल गप सब।
1: सुनल जाए।
2: श्रोता लोकन, आई गाम घरक दलान पर जागरूक गाम कार्यक्रम में एकटा विशिष्ट अतिथि उपस्थित छथि, डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान। डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में स्वागत। आज किडनी दिवस है। आज श्रोता लोकन हम सब गप करब जे बहुत रास लोग किडनी के संक्रमण से, किडनी के रोग से प्रभावित भ रहल छे। तो विस्तार से ए विषय में गप करब जे आखिर कौन कारण है जाहि से बेसी लोग एकर संक्रमण के शिकार भ रहल छे। तो सबसे पहिने डॉक्टर साहब हम आग्रह करब जे किडनी एक हमर शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, एकर कौन कौन काज है?
3: जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये दो है, दाएं और बाएं रहते हैं जस्ट फेफड़ा डायफ्राम के नीचे। तो इसका मेन काम है कि ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को रिसीव करने के बाद उससे दो तीन बातें होती हैं कि हमारा जो ब्लड है प्यूरीफाई होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होता है, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये बाहर निकालता है। कहने का मतलब कि ये फिल्टर का काम करता है, एक छन्ना का काम करता है। और इसके जहाँ तक सवाल है कि गड़बड़ होने का मतलब खराब

0: होने का, तो हम इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। हम अगर अपने खान पान, रहन सहन और को ठीक कर लें तो निश्चित रूप से एक किडनी हमारा जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
1: सामान्य रूप से गप करी हम सब तो किडनी से संबंधित सामान्य रोग कौन कौन हुई है?
0: किडनी तो एक बेसिकली जब पूरे रूप से खराब हो जाता है, इसमें 10 लाख के आसपास नेफ्रंस होते हैं जो किसी चीज़ का फिल्टर करते हैं और अपनी स्थिति में ये ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब ये नेफ्रंस खराब होना शुरू होते हैं तब इसका जो है देखते हैं कि किडनी हमारा सही से एक्सक्रीशन नहीं कर रहा, माने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं निकालता है। तो पहला तो ये है कि इसको बोलते हैं क्रॉनिक रीनल डिजीज़। तो ये होता ही होता है। यूजुअल वे में हम लोग देखते हैं कि जो हमेशा इन्फेक्शन होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है अपर और लोअर दोनों होता है, तो दोनों में यूजुअल वे में इन्फेक्शन होता है। अगर उस पर हम लोग केयर नहीं करते हैं तो ये हमारा किडनी खराब होना शुरू हो जाता है। तो इन्फेक्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है, और हम इसका क्रॉनिक डिजीज़ है जिसके कारण ये किडनी हमारा गड़बड़ होने लगता है।
1: तो सामान्य रूप से खान पान में की सब परहेज करक चाहिए? ये मान लियो रोगी नहीं छे तो वो खान पान में की सब परहेज करता जैसे किडनी के संक्रमण नहीं हुआ?
0: सबसे पहले तो हर आदमी को कम से कम प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर से लेके कम से कम 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए। ये पानी उनको बहुत हद तक किडनी को खराब होने से बचाता है, क्योंकि आपका वाटर लेवल अगर किडनी को सही से नहीं मिलता है तो वो खराब होने लगता है। फिर भी जो हम खाना है आज के समय में, जो लोग खाते हैं ज़्यादा मीट खाते हैं, ज़्यादा चिप्स वगैरह खाते हैं, सूप्स का इस्तेमाल करते हैं और केला ज़्यादा खाते हैं, नारंगी ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरह के चॉकलेट भी ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि किडनी डिजीज़ अब एडल्ट से ज़्यादा बच्चों में ही देखा जा रहा है और बच्चों में किडनी डिजीज़ ज़्यादा पनप रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्राइटिस, और नेफ्राइटिस के चलते बच्चे का किडनी जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है।
1: किछ एहन खाद्य पदार्थ सब है जकर सेवन खासकर धियापुता, वयस्क आ वृद्ध सब गोटे करे छे, जेना कि फास्ट फूड के चलन अइ समय में बड बेसी बढ़ गेले, त अइ संबंध में अहाँ की कह चाहबे, एकर सेवन करक चाही कि नहीं करक चाही?
0: देखिए, फास्ट फूड तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए सेवन, क्योंकि फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए आज भी खराब है और कल भी खराब रहेगा। तो ये फास्ट फूड का जो चलन हो गया है, जो जायका के साथ लोगों को देता है, वो समझिए कि फास्ट फूड बॉडी के लिए एक जहर की तरह काम करता है।
1: तो मूल गप यह भेल जे मुँह के भाषा, जी के भाषा नहीं बुझक चाही, शरीरक भाषा बुझक चाही, तो निश्चित रूप से अहाँ के किडनी स्वस्थ रहत। तो मान लिया डॉक्टर साहब, जे कोनो एहन व्यक्ति छै जिनका किडनी के संक्रमण भऽ गेल छै, वहाँ किडनी रोग से ग्रसित भऽ गेल छै, तो सामान्य रूप से उपचार के संदर्भ में एकर कहल जाए?
0: देखिए, किडनी जो खराब होता है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट, आजकल हर व्यक्ति जो है लगभग ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं,
1: मधुमेह रोग से
0: शिकार हो रहे हैं, और उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर आपका सही नहीं है और शुगर का मात्रा बढ़ता है तो किडनी को डैमेज करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली ब्लड शुगर को माना जाता है। बहुत सारे लोगों का शरीर में जो मधुमेह का जो कारण है वो उनका खान पान है, और जिस तरह से खान पान है आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनमें एक तरह का कुछ बातों को लेकर हीन भावना रहती है, जिससे टेंशन पैदा होता है, और टेंशन जो है डायबिटिक, और जो आजकल का खान पान है उसमें भी लोग जो है बुरी तरह

0: से प्रभावित हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को आपको सबसे पहले ठीक करना होगा, ब्लड शुगर को ठीक करना होगा। अगर शुगर का लेवल आपका नॉर्मल रहता है तो किडनी बहुत दिनों तक आपके साथ होगा, लेकिन शुगर के पेशेंट का ब्लड शुगर हाई अप होता है और कोई परहेज नहीं है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फिर फैटी सब्सटेंस खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन सब कारणों से आपके किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपका किडनी जो है डैमेज होना शुरू होता है।
1: तो मूल रूप से जो गप करी तो जे मधुमेह के रोगी छथि तो हुनका मधुमेह के माने शुगर के नियंत्रण में राखब बड़ बेसी आवश्यक।
0: जी जी,
1: तो जो अपने खान पान से औषधि से जो एकरा नियंत्रित राखै छी तो अपने कहलिए जे बहुत दिन धरि अपने के जे ई महत्वपूर्ण अंग किडनी है ओ अहाँ के संग दे। तो मान लिया ई त भेल परहेज संबंधी गप, मुदा जो कोनो एहन व्यक्ति छथि कियाकि आज देखब अस्पताल में जे किडनी से रोग से संबंधित रोगीक संख्या दिनानुदिन बढ़ रहल अछि, तो ओहि में सामान्य गप कोन उपचार होइक चाही, की होक चाही, कतल जेता लोक सब।
0: इसमें हमारा सरकार भी जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका NCD प्रोग्राम बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चूँकि डायबिटीज जो है एक दूसरे से पटने वाला बीमारी नहीं है, तो इस पर भी सरकार बहुत हद तक प्रचार प्रसार और गांव-गांव तक ब्लड शुगर का जांच सब सेंटर लेवल पर भी किया गया है, ताकि पहले तो ऐसा होता था कि शुगर के पेशेंट थे तो उनको पता ही नहीं था कि ब्लड शुगर होता क्या है, तो जब ये जांच होना शुरू हुआ तो काफ़ी संख्या में शुगर का पेशेंट फिल्टर होने लगा और सरकार के द्वारा भी उनको दवाई इंसुलिन वगैरह दिया जा रहा है। तो चाहिए कि जागरूकता, इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, संयमता बहुत ज़रूरी है, और अगर वो खतरे को समझेंगे तो अपना खान पान जो है उसको सुधारेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स डाइट नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट शुगर नहीं लेना है, डायरेक्ट शुगर लेने पर बहुत ज़्यादा शुगर जो है अप और डाउन करता है।
1: अच्छा, एहन कहल जाए छे जे चीनी से परहेज करी, मुदा गुड़ के सेवन के संदर्भ में अहाँ की कह चाहे?
0: देखिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत हद तक गांव घर में पेशेंट जो है, रोगी कुछ जो है गलत फहमी में आके जड़ी बूटियों और क्या क्या के द्वारा एक सप्ताह में शुगर भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। खास तौर पे अच्छे चिकित्सक से, मैं नहीं कहता कि MBBS डॉक्टर ही इसका सही इलाज करेंगे, जो वैद्य जी
1: जानकार
0: हैं, जो वैद्य जी जानकार हैं, चाहे वो होम्योपैथी आयुष वाले कोई भी हों, जानकार हों तो अपने पैथी से उनका इलाज करें। लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो सब माने विधि का मिक्सचर करके ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं,
1: तो जो पैथ चेंज नहीं करक चाहिए।
0: जी नहीं,
1: तो कहवाक तात्पर्य ये भेल जो चाहे छी कि हम स्वस्थ रही, सब गोटे चाहे छी, मुदा किछ खास गप एहन हुई है जे ओहि पर ध्यान राखब आवश्यक है, अपन जीवन शैली के सुधारू, खान पान के सुधारू, प्रकृतिक संग हाथ से हाथ मिला कर चलो, तो निश्चित रूप से अपने स्वस्थ रह सके छी। जो कोनो व्यक्ति जो किडनी रोग से ग्रसित छी तो योग चिकित्सक लग सरकारी अस्पताल में जाकर अपने एकर उपचार करा सके छी। तो डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान जी, अपने किडनी से संबंधित एकर सामान्य रोग आ उपचार के संबंध में बहुत नीक जानकारी दिलाऊं, अपने के धन्यवाद।
2: हाँ, अखन हमरा लोकनि सुनै छलहुँ हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता के विषय छल किडनी के सामान्य रोग एवं उपचार। भेंटवार्ताकार छलथि हैं डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान, इनका से गप कर रहल छलथि हैं अनिल कुमार कर्ण।
3: हमरा लोकनि एखन ई

0: हिनका लोकनिक बीच भेल गपशप सुनलहुँ आ सत्तो भाई हमरा लोकनि के अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देबाक चाही।
1: बहुत रास बीमारी होइत
0: अछि, कतेको अंग एहन अछि जे देहक लेल बड़ महत्वपूर्ण अंग
1: छै
0: आ ओहने एकटा किडनी सेहो। एहिसँ शरीरक प्रायः मुख्य कार्य सब संचालित होइत आ एकर सुरक्षा लेल हमरा लोकनि के अपन खान पान पर जीवन शैली पर ध्यान देबाक
1: चाही। जीवन शैली असंतुलित जखन भऽ जाइए तखने ई सब बीमारी हुआ के संभावना बढ़ि जाइत अछि। तऽ खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दी, संगे व्यायाम प्राणायाम ई सब करैत रहबाक चाही। तऽ हमरा लोकनि गप सब फेर करब उगना भाई, लेकिन श्रोता लोकनि के एकटा आर गीत सुना दियन की।
0: तऽ ई
1: अहाँ के अरविंद कुमार झा के अछि, बटोही रही जा।
0: तो सुनल जाए।

0: बटो ही रह जा हमरे गाम। ई अरविंद कुमार झा के गीत सुनले श्रोता लोकन। आब अही के संग हमरा लोकन खेती गृहस्थी में प्रवेश करे छी। या किसान भाई के बहुत बहुत स्वागत छ।
1: हमहू स्वागत करे छियन आ सतो भाई हमरा लोकन आई खेती गृहस्थी में एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब उड़ान एकर संगे गपशप करब मौसम संबंधी जे जनतब सेहो देबन नहीं किसान श्रोता भाई बहन लोकन के मुदा आई सबसे पहिने दू टपी गप करब।
0: हाँ हाँ देखू जे अखुनका समय में बरसाती प्याज के खेती करबा के अखन उपयुक्त समय अछि। खरीफ जकरा प्याज कहै छै तो एकर खेती नीक जना यदि वैज्ञानिक पद्धति के संग कैल जाए तो बेसी से बेसी उपजा प्राप्त कैल जा सकैत अछि।
1: लेकिन सतो भाई हमरा लोकन वैज्ञानिक पद्धति से तो करो संग सजग भक करबाक चाही आधुनिक विधि से करबाक चाही। कारण जो खेती के आधुनिक विधि के नहीं अपनाओ तो खेती नीक जका नहीं कह सकब। चाहे प्याज के हुए अथवा अन्य अन्य फसल हुए तो प्याजक जो खेती करब हमरा लोकन तो ओई में बेरक संग संग एकर जे प्रभेद होते ओहू पर ध्यान देबाक
0: चाहिए।
1: तब कोन कोन उन्नत प्रभेद है
0: प्याज के? उन्नतशील प्रभेद में एग्री फाउंड रेड संगे N53 एहन उन्नतशील किस्म के चयन क जून जुलाई में एकर नर्सरी किसान भाई तैयार कर लेते संगे जुलाई के अंत आ अगस्त में प्याज के रोपनी करत किसान भाई। ओहन खेत के चुनाव क प्याज के खेती करबा के चाहिए जाहि में जल निकासी के नीक व्यवस्था हुए ओहन खेत में प्याज के खेती करबा के चाहिए। किसान भाई नीक जल निकासी वाला बलुई दोमट माटि आ संगे चिकनी माटि जकर पीएच मान 5.8 से 6.5 के बीच हुए ओहन खेत के चयन करबा के चाहिए। खेत में पानी नहीं जमा हुए संगे कियाकि बरसात के मौसम में पानी जमा हुआ सा कंद सड़ लागत अछि एहि लेल
1: ठीक है कहलो
0: ऊंच खेत के चयन क के एकरा खेती करबा के चाहिए। बिया दर एक हेक्टेयर खेत के लेल लगभग 3 से 4 किलोग्राम बिया के आवश्यकता होइत अछि। नर्सरी में अहाँ के कहबे कलौ जून से जुलाई के बीच उठल क्यारी में बीज के बुआई क नर्सरी तैयार कर लेबा के चाही और रोपाई जखन पौध 35 से 40 दिन के लगभग भ जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा जखन वो गाछ भ जाए तखन जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहिल सप्ताह में मुख्य रूप से खेत में एकर रोपाई करबा के चाहिए।
1: तो सतो भाई एखन जे बेर अछि वो अछि प्याज के जे बिया तकरा नर्सरी में खसेबा
0: के छै।
1: तो एहन में हमरा लोकन के सबसे पहिने नर्सरी तैयार करबा के चाहिए तखन ओय में बिया देबा के चाहिए आ तकर बाद जहन गाछ

0: पैघ भऽ जाइत छै, तकर बाद ओकरा खेतमे रोपाई करना
1: चाहिए। आ पौधसँ पौधके दूरी 10 सेंटीमीटर आ कतारके दूरी 15 सेंटीमीटर रखबाके चाही। आ गोबरके खाद रोपाईसँ अहाँके 10 सँ 15 दिन पहिने खेतमे तैयारी करै समय से 15 सँ 20 टन सरल गोबरके खाद दऽ कऽ माटिमे मिला देबाके चाही। आ रासायनिक खादमे प्रति एकड़ लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटासके उपयोग करबाके चाही।
0: तऽ एहि प्रकारे हमरा लोकनि ध्यान दऽ कऽ बरसाती प्याजक खेती करब तऽ निश्चित रूपसँ मनोनुकूल आमदनी होयत आ हमरा लोकनि प्रसन्न रहब। सतो भाई, आ आब हमरा लोकनि सुनैत छी ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, तो सुनल जा।
1: सुनल जा।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, उड़ान उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सभी का इंतजार कर रही है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप फोन नंबर लिख लीजिए। फोन नंबर है
3: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: जी हाँ दोस्तों, भारत में हजारों लड़कियां हर वर्ष गायब हो जाती हैं और उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। गरीबी के कारण कई लड़कियों को मंडी में सब्जी की तरह बेच दिया जाता है। इन लड़कियों की कहीं पूछ परख करने वाला नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 13 वर्षीय ख्वाहिश, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में होशियार, अपने माँ बाप की अकेली संतान जो अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहती है। एक दिन ख्वाहिश अपने माता पिता से एक मेले में जाने की जिद करती है, पर उसके माता पिता को अपने मालिकों से छुट्टी नहीं मिल पाती। बेटी को उदास देख उसकी माँ भी उदास होती है और ये बात अपने साथ काम करने वाली सुधा से बांटती है।
4: सुधा बहन, आज मन बहुत उदास है।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ख्वाहिश कितनी समझदार बच्ची है, और हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति को समझते हुए आज तक उसने कभी हमसे कोई जिद नहीं की, और आज जब पहली बार उसने मेले में जाने की बात की तो हम उसे ले जा नहीं सकते, बस यही सोचकर परेशान हूँ।
2: सुधा कुछ सोचती है और एकदम से बोल पड़ती है,
5: अरे कोई बात नहीं बहन, तुम नहीं तो उसकी सुधा मासी है ना, मैं उसे ले जाती हूँ।
4: अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे अगली बार ले जाएंगे।
5: अरे बहन कैसी बातें करती हो, मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है, मैं अभी छुट्टी लेकर निकल जाती हूँ और ख्वाहिश को स्कूल से ले लूँगी और वहीं से उसे मेले भी ले जाऊंगी।
2: ममता कुछ सोचती है पर सुधा के बार बार प्यार से जिद करने पर मना नहीं कर पाती। ख्वाहिश का अभी बचपन भी नहीं गया था कि उस मेले में उसका अपहरण हो जाता है। अपने परिवार से दूर ख्वाहिश को जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बेच दिया जाता है और उसका सामना ऐसे नर्क से होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ ख्वाहिश के माता पिता बहुत रोते हैं।
4: सुधा, अरे कैसे हो गया रे, मेरी ख्वाहिश कहाँ खो गई?
5: बहन ममता मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश बहुत जिद कर रही थी, उसे बड़े वाले झूले पर जाना है। मैंने उसे बहुत बहुत समझाया कि मुझे डर लगता है और मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, पर वो नहीं मानी। ममता बहन मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश का ख्याल नहीं रख सकती
4: मेरी बच्ची।
5: बहन मुझे माफ कर दो।
2: ख्वाहिश के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन ख्वाहिश का कुछ पता ना चला।

दूसरी ओर उस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले ख्वाहिश का सामना वहां के सबसे बड़े व्यापारी से होता है, जो उसके साथ क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म करता है। इसके बाद ख्वाहिश को उस मंडी में भेज दिया जाता है जहां जिस्म का सौदा होता है। ख्वाहिश की वहां पर राधिका नामक लड़की और ज्योति नामक मैडम से मुलाकात होती है। ज्योति इस धंधे का कामकाज देखती है। राधिका और ज्योति इस धंधे की बारीकियां ख्वाहिश को समझाती हैं, ताकि वह वेश्यावृत्ति कर सके। ख्वाहिश इसके लिए तैयार नहीं होती। वह दुर्भाग्य को मानने से इनकार करती है। कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती है।

होती। वह दुर्भाग्य को मानने से इनकार करती है, कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती है।

0: बुरे और हिंसात्मक व्यवहार के बाद ख्वाहिश धीरे धीरे वेश्यावृत्ति को स्वीकार कर लेती है। अब यही उसका घर और यही उसका परिवार है। ख्वाहिश का बचपना इस गंदे बाजार में खो जाता है। तनाव से दूर रहने के लिए वह शराब की आदी हो जाती है। आखिरकार उसे आशा की एक किरण नजर आती है। उषा नामक एक सोशल वर्कर अक्सर इस धंधे में लगी लड़कियों से मिलने आती है। वह उन्हें प्यार, मिठाइयां और सहानुभूति देती है। धीरे धीरे ख्वाहिश और उषा का रिश्ता गहरा हो जाता है और ख्वाहिश रो रो कर उषा से अपनी सारी कहानी सुनाती है।
1: उषा दीदी, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, वापस अपने परिवार के पास। आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता के हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ।
2: ख्वाहिश बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकूं।
0: कुछ वक्त बीतने के बाद उषा ख्वाहिश को बताती है कि उसने ख्वाहिश का परिवार ढूंढ निकाला है। ख्वाहिश एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोठे पर काम करने वाला एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है।

एक दिन ख्वाहिश के पास रोहन नामक कस्टमर आता है, जो कि उषा का दोस्त था। रोहन एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और लड़कियों को छुड़ाता है। उन्हें सिर्फ एक गवाह की जरूरत होती है, जो उन व्यापारियों के खिलाफ अदालत में गवाही दे सके। लेकिन उन्हें एक भी गवाह नहीं मिलता। तब ख्वाहिश बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उन देह व्यापारियों के खिलाफ गवाही देती है, एक ऐसे हीरो की तरह जो डरपोकों की दुनिया में बहादुरी दिखाती है और बुराई पर अंत में विजय पाती है।

0: वो नजरे उठाती तो लोग उसे घूर रहे होते, कहीं से गुजरती तो अपनी ही कहानी लोगों की जुबानी सुनती। उसका अपना परिवार भी इन हालातों से जूझने लगा था, पर उसने अपनी नजरें लोगों की तरफ नहीं पर अपने ईश्वर की ओर लगाई। उसने हियाव बांधा और दृढ़ रही। वो लोगों की बातों से ना डरी और ना भयभीत हुई। वो जानती थी जो ईश्वर उन बुरे हालातों से उसे निकाल कर ला सकता है, वो इन हालातों में भी उसे ना छोड़ेगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस फिर क्या था, ख्वाहिश की लगन और मेहनत ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज वो एक सामाजिक संगठन में अफसर है जो अपने जैसे हालातों से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करती है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। अब ना ही केवल उसका परिवार उस पर गर्व करता है, पर पूरे गांव ने उससे माफी मांगी और उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
1: दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है क्योंकि आजकल मानव ही मानव का व्यापार करने लगा है। क्या विडंबना है ना श्रोताओं, आज मानव ही मानव के महत्व को भूल गया। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर के इंसान को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मानव तस्करी होती रहेगी। हमें चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से बचे जिससे मानव तस्करी में कमी आए। और इस तस्करी की समस्या ज्यादातर उन लोगों की वजह से होती है जिनकी मानसिकता ये है कि वो महिलाओं को, बच्चों को, मानव को महज एक खिलौना समझते हैं, महज पैसे कमाने का एक जरिया समझते हैं। अगर हम मानवता की बात करते हैं, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उन बातों पर काम हम क्या करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सही मायने में एक मानव, एक योग्य मानव बने और इस तरह की चीजों को अपने समाज से हटाने में योगदान दे।
0: तो दोस्तों, अगर आप ख्वाहिश की जगह होते तो आप क्या करते? कहीं आपके आसपास भी तो कोई ख्वाहिश नहीं जो समाज की चिल्लाहटों में दब गई हो? दोस्तों, मैं चाहूंगी कि आप उसकी मदद करने का एक प्रयास जरूर करें। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ मिला होगा। हमसे अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए हमारा पता और फोन नंबर लिख लीजिए। कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01, और हमारा फोन नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: अंत में इस कविता के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। कठोर छाती धकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत मैं बार बार वापस आता रहा। धूल घुल गई जब सोच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा। टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, साध निशाना मैं वार हर बार बरसाता रहा। बिखर रहा था वह इस चोट से जर्रा जर्रा, देख साहिल मैं उस पार रास्ता बनाता रहा। कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा।

ख्वाहिश अब अपने परिवार से मिली और उसने सब बताया कि कैसे सुधा ने उस शाम धोखे से उसे देह व्यापारियों के हाथ बेच दिया था। पुलिस ने ख्वाहिश का पूरा बयान दर्ज कर सुधा और उससे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और अब मानव अधिकारों का हनन करने के जुर्म में उन पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ख्वाहिश ने सब कुछ सहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जिंदगी के हर गम भुलाकर अपने जीवन का फिर से एक नया अध्याय वो लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने समाज और अपने ही गांव के लोगों ने उसका जीना उतना ही मुश्किल किया जितना कि पहले।

0: उगना भाई अखन हमरा लोकनि सुनै छलना प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, तऽ श्रोता लोकनि के नीक लागल हेतनि।
1: आ सत्तू भाई, आप स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनि के जे मौसम संबंधी जे जनतब ओ दऽ दियौन।
0: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 22 से 26 जुलाई 2026 धरि के मौसम पूर्वानुमान एहि प्रकारे रहबाक अनुमान अछि। पूर्वा

0: अनुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में नीक वर्षा हेबाक संभावना नहि अछि। हालांकि 23 से 24 जुलाई के आसपास से गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिला में किछु स्थान पर हल्लुक से मध्यम वर्षा हेबाक संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि में आन जिला में बिजली चमकवा एवं तेज हवा के संग कतौ कतौ हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि। एहि दौरान तापमान में गर्मी में थोड़े राहत मिल सकैत अछि। ज्यादातर स्थान पर अधिकांश तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबा के संभावना अछि।
1: पूर्वानुमानित अवधि में हवा में बेसी नमी बनल रहबाक संभावना अछि। भिनसर के बेर में सापेक्ष आर्द्रता 85 से 95% धरि और दुपहरिया में 50 से 60% के बीच रहबाक अनुमान अछि।
0: असमसामयिक सुझाव में आप किसान भाई के अखुनका समय में तिल के जे खेती अछि, जाहि उचास स्थान में धान के खेती नहीं कऽ सकलहुँ हैं, तो ओहि एहि सप्ताह के भीतर तिल के बुआई किसान भाई कऽ लैत। बुआई से पूर्व से अहाँके बिया के थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बिया के दर से उपचारित कर लैत। आ संगे एहि के लेल तिल के लेल अनुशंसित प्रभेद कृष्णा, कालिका, काके सफेद, प्रगति, MT 75 किस्म के चयन कऽ कऽ एकरा बुआई करबा के चाही। 30 × 10 × 15 सेंटीमीटर के दूरी राखत। प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल गोबर के खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस आ 20 किलोग्राम पोटास के प्रयोग किसान भाई करत। राहरि के नीक जल निकासी वाला ऊंचा जमीन में खरीफ राहरि के किसान भाई अखन बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हुए किसान भाई के मेड़ पर रीज के विधि से एकर बुआई करवा के चाही। आ इहो लेल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर के उपयोग किसान भाई खाद के रूप में करें।
1: मिर्चाई के ऊंच क्यारी बना कर आ नर्सरी में एकर बिया के बाउग कर सकै छी। बाउग से पहिने बिया के थीरम 75% जे होइत अछि पाउडर डस्ट, ताहि से उपचारित करबाक चाही आ अनुशंसित प्रभेद के चुनि कऽ एकरा बाउग करबाक चाही। सामान्य प्रभेद के लेल 800 से 1000 ग्राम आ संकर प्रभेदक लेल 250 से 300 ग्राम मिर्चाई के बिया के आवश्यकता प्रति हेक्टेयर धरि होइत अछि। प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबरक खाद आ 100 से 120 नाइट्रोजन, 40 से 50 फॉस्फोरस आ 40 से 50 किलोग्राम पोटास उर्वरकक व्यवहार
0: संगे मिश्री कंद के जे अनुशंसित किस्म अछि। मिश्री कंद अहाँके 2 किस्म के चयन कऽ कऽ से किसान भाई एकर
1: मिश्री कंद के हमरा लोकन केसौर सेहो कहै छी
0: एकर बुआई करैत। आ प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बिया एहिमे लागैत अछि। 30 × 30 सेंटीमीटर के दूरी आ 200 क्विंटल कम्पोस्ट के खाद दऽ कऽ बुआई करैत।
1: तऽ ई छल स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के लेल कृषि संबंधी समसामयिक परामर्श आ अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर संपन्न भ रहल अछि। तो हमरा लोकन स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन से चलबाक आज्ञा लै छियनि।
0: नमस्कार उगना भाई।
1: नमस्कार सत्तू भाई।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: काम नहीं कर पाऊंगा।
1: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाते भी मतदान किया जा सकता है।
2: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ।
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
12: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
13: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
14: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
15: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
14: आकाशवाणी।
15: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
14: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ऑनर या एग्रीगेटर हैं?
15: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
14: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
15: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
14: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
15: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
14: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटिस मोड।
15: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
14: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
15: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
14: तो फिर इंतजार किस बात का?
15: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
14: हमारा ईमेल पता है
15: ddgeairpatna@redifmail.com या pecairpatna@gmail.com या
14: hooairpatna@prasarbharati.gov.in।
15: अधिक

0: जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
1: आपका आइडिया, आपकी आवाज, आकाशवाणी का मंच।
0: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। त्यागपत्र में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी कल्याण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा और सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता तथा मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आंदोलन वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने बताया कि आंदोलनकारियों की उचित मांगों को मान लिया गया है।
1: कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
0: मौके पर सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापसी का ऐलान करते हैं। सीजीपी के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर समेत सभी स्थानों से शांतिपूर्वक वापस लौटने की अपील भी की है।
2: The Congress जनता पार्टी declares that the withdrawal application in good faith and understanding that we agreed upon term will be executed within the agreed upon time.
0: इधर वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। कांग्रेस और राजद समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया था। बंद के मद्देनजर राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस दौरान सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रही। राजधानी पटना में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात थीं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन आज पूरे हो गए। पटना के बीआईटी मेसरा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं को बड़े पैमाने पर निपटाया जा रहा है।
3: अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9,000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा।

0: और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा, 30 दिन किसी ने पार नहीं किया।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11,464 करोड़ रुपए की लागत की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। इन योजनाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखाए मार्ग पर ही सरकार राज्य को आगे ले जाने का कार्य कर रही है।
2: इस सरकार का जो मूल मकसद और मूल उद्देश्य है वो है निरंतरता के साथ विकास के नए आयाम जोड़ते जाना।
1: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने इन 100 दिनों में साफ नियत और स्पष्ट नीति के माध्यम से प्रगति के नए आयाम तय किए हैं।
3: बिहार सरकार ने इन 100 दिनों में यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दृढ़ हो तो विकास की गति निरंतर बनी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत और समृद्ध बिहार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है।
1: कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के कई सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इधर हमारे जिलों से संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न स्थानों पर 100 दिन पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने आज पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार सरकार राज्यवासियों को आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार स्वास्थ्य संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।
4: आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने 400 बेड के नए LNAJP का यूनिट का उद्घाटन किया है। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी उन्हें। लगभग 42 ICU बेड हैं, 6 OT हैं और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है के रूप में डेवलप किया गया है। आधुनिक रेडियोलॉजी की व्यवस्था है जिसमें CT scan, MRI सब है, तो इसे और बेहतर चिकित्सा उपचार मतलब इसे बेहतर सुविधा हम दे सकेंगे मरीजों को।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वेटनरी कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत AC और नॉन AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा

0: प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, राजद और जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में एनडीए की ओर से मंदिरी क्षेत्र के काठपुल इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत तय है। सभा को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री रामकृपाल यादव समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। इधर राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों ने भी सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
1: दिनांक 26 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के झंडू कुमार ने भारत को पहला पदक दिलाकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना दिया है। झंडू ने पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। झंडू कुमार नालंदा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीट झंडू कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास एक यात्री बस और टैंक लॉरी की टक्कर में बस पर सवार 22 लोग घायल हो गए। लखीसराय जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बसेरा 2 अभियान के तहत 10 चयनित लाभुकों को भूमि का पर्चा प्रदान किया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। सुपौल के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने टीबी मरीजों के बीच पोषण सामग्रियों का वितरण किया। बांका के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर आज कांवरिया पथ पर बाल मजदूरी उन्मूलन अभियान के तहत छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों, ढाबा और होटल का निरीक्षण किया गया। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। स्थानीय विधायक ऋतुराज कुमार ने इस विधानसभा क्षेत्र में 10 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आगामी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के महाराजगंज स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित किए गए उर्वरक को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने विभिन्न मामलों में अभियुक्त 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई है। मादक पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से

0: अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
1: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। नालंदा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
9: नालंदा जिले में मॉनसून की सक्रियता के कारण लगातार हो रही संतोषजनक बारिश से धान की रोपनी के कार्य में तेजी आई है। जिले में अब तक लगभग 54% धान की रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है। कृषि विभाग ने कहा है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में रोपनी का कार्य और तेज गति से पूरा होगा। अच्छी बारिश के बाद किसानों में भी उत्साह है। आस्था, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में प्रसिद्ध राजगीर के प्राचीन गर्म जल कुंडों पर अब अस्तित्व का गंभीर संकट मंडराने लगा है। कभी निरंतर प्रवाहित रहने वाले अनेक प्राकृतिक गर्म जल कुंडों के जल स्रोत एक एक कर सूखते जा रहे हैं। गंगा, जमुना, अनंत ऋषि, ब्यास, मार्कंड ऋषि और गोदावरी जैसे कुंडों के जल स्रोत पहले ही सूख चुके हैं। अब विश्वविख्यात सप्त ऋषि कुंड भी सूखने के कगार पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक जल धाराओं का समाप्त होना केवल मौसमी बदलाव का परिणाम नहीं हो सकता, इसके पीछे भूगर्भीय परिवर्तन, जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव, अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन, जल निकासी के प्राकृतिक मार्गों में बाधा तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसे कई कारण हो सकते हैं। बीते दिनों ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने भी राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले ब्रह्मकुंड क्षेत्र का निरीक्षण कर सूखते कुंडों और घटते गर्म जल स्रोतों पर गहरी चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कुंडों और झरनों की स्थिति का भी जायजा लिया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त ने बीते दिनों नालंदा स्थित वेन सांग स्मारक परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने उनका स्वागत करते हुए प्राचीन नालंदा की प्रतिकृति मुहर भेंट की। राज्यपाल ने स्मारक परिसर में प्रदर्शित ऐतिहासिक धरोहरों, दुर्लभ चित्रों, हेनसोंग के अस्थि संग्रहालय तथा अन्य प्रदर्शनों का अवलोकन किया। उन्होंने बौद्ध अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और नालंदा की गौरवशाली अकादमिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाविहार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बिहार के उभरते तैराकों के लिए स्विमिंग फेडरेशन

0: ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से 25 एवं 26 जुलाई को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अत्याधुनिक स्विमिंग पूल में 42वीं सब जूनियर एवं 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यह ओपन चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी पात्र और इच्छुक तैराक भाग ले सकते हैं। चयन के लिए ट्रायल राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिनों तक चलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय और पर्यटन विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में विरासत और पर्यटन क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए 5 दिवसीय विरासत पर्यटन प्रबंधन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से ऑनलाइन पंजीकरण आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन आज से 29 जुलाई तक नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। नालंदा जिले में बीते दिनों आस्था श्रद्धा और सनातन संस्कृति के महापर्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का भव्य शुभारंभ राजगीर में हुआ। इसे लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगीर पहुँचे। महोत्सव के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई श्री बलभद्र और बहन माता सुभद्रा की दिव्य प्रतिमाओं से सुसज्जित भव्य रथ यात्रा निकाली गई।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। नालंदा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।

हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। पांच दिनों का मानसून सत्र मिला जुला रहा। छात्र आंदोलन के मसले पर विधानसभा में हंगामा हुआ तो दूसरी ओर सरकार ने विधायी कार्य भी निपटाए। पांच दिनों की कार्रवाई में 21 राजकीय विधेयकों पर मुहर लगी। विधानसभा में 1038 प्रश्न आए, इनमें 971 प्रश्न स्वीकृत हुए, 74 अल्पसूचित प्रश्न में 70 प्रश्नों के उत्तर आए। इसी तरह 721 तारांकित प्रश्न में 697 के उत्तर मिले, जबकि 176 प्रश्न अतारांकित हुए। सोमवार को पांच दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हुई। अपने प्रारंभिक संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर सदन में सार्थक बहस करें। सभाध्यक्ष ने मानसून सत्र के लिए राम नारायण मंडल, श्याम रजक, आलोक मेहता और ज्योति देवी को अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर इस राशि को खर्च करने की इजाजत सदन से मांगी। पहले दिन देश प्रदेश के नामी गिरामी राजनेताओं व शख्सियतों के निधन पर शोक प्रकट किया गया। मंगलवार को प्रश्नोत्तर काल के में गौतम कृष्ण के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE4 के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षक की बहाली होनी है। शिक्षकों की कमी का आकलन कर लिया गया है। बहाली की अधियाचना इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। रुहेल रंजन के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने माना कि शिक्षकों की पोस्टिंग में विसंगतियां हैं, सरकार ने तबादला नीति बनाई है। शालिनी मिश्रा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने माना कि विभाग में 80% पद रिक्त हैं। संजय कुमार सहित अन्य ने ध्यानाकर्षण के जरिए सीएम क्षेत्रीय विकास योजना का मामला उठाया। सदस्यों ने कम से कम 6 करोड़ विधायक निधि किए जाने की मांग की। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने का अधिकार वित्त विभाग और सरकार को है। दूसरी पाली में विधानसभा में 7 विधेयकों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। इनमें बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए सब परिवर्तन

निरसन विधेयक 2026 शामिल हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही मिलीजुली रही। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के कुमार सर्वजीत ने राज्य में सूखे का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिलाधिकारियों को बारिश और सूखे की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जहां भी सुखाड़ की स्थिति होगी सरकार तुरंत डीजल अनुदान देगी। दूसरी पाली में राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण कानून को और सख्त बनाते हुए संगठित अपराध और भूमि माफियाओं को भी इसके दायरे में लाया है। इसे लेकर विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इसके तहत पेपर लीक से संबंधित गिरोहों, विस्फोटक पदार्थ, किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करना, सरकारी संपत्ति के व्यापक नुकसान और वन क्षेत्र के उत्पाद एवं वन्य जीवों के व्यापक नुकसान जैसे मामलों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटना में बुधवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक श्यामबाबू यादव ने कहा कि बुधवार को डाकबंगला चौराहे पर उन पर हमला हुआ और हमलावर कोई छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। विपक्षी सदस्य ने इसका विरोध किया। हाथापाई की स्थिति भाप मार्शल दौड़कर आए और सदस्यों को उलझने से रोका। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार मानती है कि छात्रों को आंदोलन करने का हक है, पर इस आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों को इसमें प्रवेश कर किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे हमलावरों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पुलिस प्रशासन छात्रों पर गोली चला रही है। वहीं सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन में असामाजिक तत्व शामिल हैं जो आम लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी पीट रहे हैं। दोनों पक्ष से हो हंगामा शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। हंगामा बढ़ता देख सभाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने 5 मिनट बाद ही सभा की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में सप्ताह भर की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। मानसून सत्र में विधान परिषद का 213वां सत्र खूब हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस सत्र में 5 बैठकें हुई। शिक्षा से लेकर पंचायत तक के मामले उठाए गए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही शिक्षा मंत्री को घेरा, शिक्षकों के मुद्दे उठाए। इस सत्र में 21 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों, छात्र आंदोलन और नीट विवाद पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे जोरदार ढंग से उठाए। राजद के विधान पार्षदों ने छात्र आंदोलन और नीट मामले को लेकर सदन में प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। पूरे सत्र के दौरान सदस्यों ने प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और निवेदन के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों को सरकार के सामने रखा। सरकार ने कई सवालों के जवाब सदन में दिए जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों और समितियों के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया। 5 दिनों के सत्र के प्रथम दिन सोमवार को सदन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत को विधान परिषद के सभी सदस्यों ने उनके जन्मदिन की बधाई दी। बतौर विधान पार्षद वे पहली बार सदन में आए थे। परिषद की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अपने प्रारंभिक संबोधन में सभापति ने सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी, साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी याद किया। सदन में 12 नव निर्वाचित सदस्य भी मौजूद थे। जन्मदिन की बधाई मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने सबके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि हमें मिलकर काम करना है। मंगलवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में राजद एमएलसी अशोक पांडे के गैर सरकारी संकल्प का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत दोबारा शुरू करने की सिफारिश भारत सरकार से करेगी। बुधवार को विधान परिषद की पहली पाली में भाजपा के नवल किशोर यादव और राजद के सुनील सिंह आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के लिए संसदीय भाषा का प्रयोग किया। बुधवार को विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होती ही राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। इस मुद्दे पर पक्ष के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे। निर्दलीय महेश्वर सिंह और भाजपा के घनश्याम ठाकुर ने भी सुरक्षा की मांग को इस पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मामले की तह तक जाकर जांच की जाएगी। इसके पहले सदन पटल पर प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन में रखी गई। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा से जुड़े सवाल अधिक किए गए। अभी आप विधानमंडल में सप्ताह भर की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, जबकि विधान

0: परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार
1: ये आकाशवाणी है किया गया। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है।

शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की

कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच गया। पहले आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन कि आपने बहुत सारे फोन कॉल किए और जिज्ञासा व्यक्त की और सारे जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, चाहे वो सुल्तानगंज पटना हो, बिदुपुर बाजार हो, या आदमपुर भागलपुर हो, सहरसा हो, राजापाकर हो, पूरे बिहार से फोन कॉल्स आए हैं। अच्छा लग रहा है। हालांकि जितने फोन कॉल की हमने उम्मीद की है उतने नहीं आए, लेकिन फोन कॉल्स आए, अच्छा लगा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। और खास करके जब आपने BCA और BBA के बारे में जानकारी ली, और ये कार्यक्रम हम जिनके तरफ से लेकर आते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज, उसके विषय में भी जानकारियां लिए। कुछ फोन कॉल ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमने फोन पर बात किया, अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने वहां पढ़ रहे युवाओं से बातचीत की, उनसे बातचीत के अंश सुनवाए, जिससे कि हमें कंसेप्ट बनाने में, हमें कॉलेज के विषय में जानकारी एकत्रित करने में आसानी मिली। कुछ ने कहा वेबसाइट पर भी गए। हाँ, जानकर अच्छा लगा कि सगुना मोड़ पटना में और राजेंद्र नगर पटना में आर्केड बिजनेस कॉलेज है, और जो 27 वर्षों से लगातार BCA और BBA को लेकर काम कर रहा है। और प्लेसमेंट के विषय में भी जानकर अच्छा लगा कि दसियों कंपनी आती है जहां की बच्चे युवा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बहरहाल, हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजेश आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आता है उसे ठोक बजा कर देखता है पहले, फिर आप तक बातें पहुंचाता है। उड़ान उड़ान आज इस साल सिर्फ नहीं, पिछले वर्षों से हम आपके लिए इसी समय ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। अगर आप भी BCA और BBA करना चाहते हैं तो नंबर नोट करें, 7520800 ये नंबर है आर्केड बिजनेस कॉलेज का। एक बार जरूर बात कर लेंगे, जानकारियां ले लेंगे। हाँ, सगुना मोड़ पटना और आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना में ये संस्थान है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम कहते हैं कि संस्थान का चुनाव करते वक्त ये जरूर देखिए कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एकमात्र BCA और BBA के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखनी चाहिए, उसके बाद आपको फैकल्टीज का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद जो है पढ़ाई के बाद ये लोग प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, कोई असिस्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे आर्केड बिजनेस कॉलेज में 100% असिस्टेंस है, आप उनकी मदद ले सकते हैं। बहरहाल, स्थायी मान्यता प्राप्त वाले संस्थानों में अकेला खड़ा है आर्केड बिजनेस कॉलेज, जिससे क्या होता है,
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: चलिए, आज भी हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे ली गई बातचीत हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आर्केड के विषय में आपको विचार बनाने में कि जाएं ना जाएं बहुत मदद मिलेगी, या अच्छा संस्थान चुनने में मदद मिलेगी। हम तो ये कभी नहीं कहते कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो गुजरा हुआ वक्त है ना, वो फिर से नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए आप पूरे एपिसोड में देखिएगा, राजेश कहता है BCA और BBA की पढ़ाई कहां से पढ़नी है, क्या करनी है, ये कुछ भी नहीं कहते। सिर्फ हम थैंक यू कहते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ को कि इतना अच्छा कार्यक्रम इस साल भी हमें आप सबों तक पहुँचाने का मौका दिया।
4: सर, मेरा नाम रिया राज है, अभी मैं BCA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर, BCA मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, मतलब कंप्यूटर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, AI वगैरह को जानने में मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरी, मशीन्स वगैरह को जानने में, इसको एक्सप्लोर करने में, कोडिंग वगैरह को सीखने में, पाइथन, जावा, C++, इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था।
0: क्या आपको ऐसा लगता है कि आप BCA कर लेंगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी?
4: हाँ, ज़रूर, मैं जॉब ही लेना चाहती हूँ टेक कंपनी में, और यहाँ बहुत ऐसा मतलब आते रहता है अपॉर्चुनिटी। यहाँ का दावा है आर्केड बिजनेस कॉलेज का, हर दूसरे बच्चे को यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट मिलेगा। और

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पट।

0: हमारे टीचर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ये हर दूसरा बच्चा नहीं हर दूसरे बच्चे हर बच्चे को यहाँ मिल पाए प्लेसमेंट।
1: आर्केड बिजनेस कॉलेज से आपने BCA करने के लिए क्यों चुना?
0: आर्केड बिजनेस कॉलेज वैसे मुझे तो रिकमेंडेशन मिला था मेरे एक फ्रेंड से जो अभी सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, फिर मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ की फैकल्टी से इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग का। उसके बाद यहाँ के सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ मतलब ट्राई किया जाता है कि बच्चे को पुश किया जाए उस चीज़ में। अब ये तो हमारे पे निर्भर करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा जॉब, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिना पढ़े ही सब कुछ मिल जाए।
1: वाह, कितनी अच्छी बात आपने की कि अगर रोजगार चाहिए तो आपको भी मेहनत करनी होगी। आपके साथ फैकल्टी लगे होंगे, पूरा इंस्टीट्यूशन लगा होगा, लेकिन आपको भी कोशिश करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। ये सिर्फ आर्केड के बच्चे ही ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एक माहौल है यहाँ पर। बहरहाल, अगर हम आपसे कहें कि पूरे बिहार में ये कार्यक्रम बज रहा है, उन बच्चों को मोटिवेट कीजिए जो घर में लोग बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? आर्केड बिजनेस कॉलेज, BCA, BBA, उनसे क्या बातें कहेंगी आप?
0: ये अपॉर्चुनिटीज है, ये बैठ के सोचने से कुछ होगा नहीं। अब आप अपने आप को जितना इग्नोर करते रहोगे उतना आप मतलब गड्ढे में गिरते जाओगे, क्योंकि एटलीस्ट सबको पता है कि पटना में, बिहार में और पूरे भारत में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग अपने फ्यूचर के खिलाफ एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम और भी गिरते चले जाएंगे और उस लाइन में चले जाएंगे जहां हमसे कोई कभी नहीं पूछेगा। तो अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, तो लेना ही चाहिए एडमिशन सबको।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि आपकी एक सीनियर थी जिसने आर्केड को रिकमेंड किया कि आप यहाँ आ जाओ, एडमिशन ले लो, है ना? तो जब आपने एडमिशन ले लिया तो अब क्या सोचती हैं आर्केड के बारे में, प्लेसमेंट, क्लासेज या फैकल्टी, इन चीजों के बारे में चलते चलते बताइए।
0: आर्केड बहुत सहयोग कर रहा है क्योंकि ये लोग सारे कंपनीज लगभग लाते ही रहते हैं हम लोग के लिए। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं सबको। अब ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी लापरवाही वगैरह भी कुछ नहीं है। इवेंट्स वगैरह में भी ले जाया जाता है और ऐसे ऐसे इवेंट्स में ले जाया जाता है जिससे हम लोग का मतलब लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन इवेंट्स के कारण उनका कॉन्फिडेंस भी खुलता है। तो और क्या ही चाहिए,
1: और क्या ही चाहिए, ये संतुष्टि है, ये संतुष्टि है स्टूडेंट का अपने इंस्टीट्यूशन से, जो बहुत बड़ी बात है। और राजेश हमेशा यही चाहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाई करें। पैसा तो लगेगा, हाँ समय भी लगेगा, तो हम रिजल्ट की क्यों नहीं उम्मीद करें। और बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संस्थान अगर मेहनत कर रहा है तो। उड़ान कार्यक्रम चल रहा है लगातार वर्षों से, इसी समय हम आते हैं और BCA और BBA को प्रमोट करते हैं, बताते हैं बच्चों को कि ये कोर्स बहुत ही वाइब्रेंट है, रोजगार मिल जाता है। और 27 वर्षों से जो संस्थान लगा है BCA और BBA के साथ वो है आर्केड बिजनेस कॉलेज, हम उसकी मदद लेते हैं ये सारी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। और आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना में है, सगुना मोड़ पटना में है, दोनों जगह है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बहरहाल एक नंबर बताते हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, 7520808000। और अब सुनिए ये क्या कह रही हैं।
2: जी मेरा नाम मंशा नौशाद है जी, मैं पटना कुम्हरार की रहने वाली हूँ जी। मैं यहाँ करेंटली BCA सेकेंड ईयर में हूँ आर्केड बिजनेस कॉलेज से जी। ऐसे तो मेरा कोई चांसेस टेक फील्ड में आने का नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बोले कि तुमको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम टेक फील्ड में जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा था। और मैं स्टार्टिंग से बचपन से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम ये फील्ड परस्यू करो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा।
1: और आर्केड बिजनेस कॉलेज का चुनाव किसकी हाँ देन थी?
2: तो बेसिकली ये मेरी सिस्टर का प्लान था कि उसने बहुत जगह रिसर्च किया और आर्केड उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था। मेरे लिए मेरी सिस्टर मेरी गार्डियन है और वो उसको ही बेटर लगा था कि वो बोले कि अभी जितना भी पटना में फैकल्टीज है उसमें सबसे बेटर आर्केड बिजनेस कॉलेज इंस्टीट्यूट है, तो तुम वहाँ जाके अपना BCA परस्यू करो। और यहाँ आके मैंने पाया कि मेरी सिस्टर बिल्कुल सही थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, फैकल्टीज सारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मिलता है, हम लोग को एजुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ का, एंड जॉब्स के लिए भी यहाँ बहुत सारी कंपनीज आते रहते हैं।

0: करते हैं। वीपी ने देखा भी है बहुत सारे सीनियर्स के जॉब लगे, बस यही होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आप अगर पढ़िएगा ही नहीं तो जॉब के क्या, उसमें फैकल्टीज भी कुछ नहीं कर पाते हैं, मेन तो हमें ही पढ़ना पड़ता है।
1: तो आपको तो आपकी दीदी ने गाइड कर दिया और अब आपके फैकल्टी आपको गाइड कर रहे हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज में। अगर जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर हम कहें कि आप गाइड कीजिए उन्हें, तो आप क्या कहिएगा?
0: तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका किसी और फील्ड में मन है तो वहाँ जाइए, और अगर नहीं, और अगर आपको कंप्यूटर टेक के फील्ड में जाना है तो BCA बेटर ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अभी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और आप लोग देख भी रहे हैं रोबोटिक्स एनालिटिक्स बहुत सारे जॉब ऑप्शन खुल रहे हैं। आप लोग को, हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो AI को कोई चला सकता है, हमें रोबोट्स नहीं ना हायर करना, हमें AI को चलाने वाला चाहिए। तो हम लोग अगर BCA करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन खुलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि BCA करो, और अगर पटना से हो तो प्लीज आर्केड में एडमिशन ले लो।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: तो सुना आपने स्टूडेंट्स को, है ना, स्थायी मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्था ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। कहते हैं कि स्टूडेंट आईना होता है किसी भी संस्थान का। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ड्यू टू आर्केड बिजनेस कॉलेज। फैकल्टी अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अच्छी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए टीचर्स अच्छे, इसके अलावा इवेंट्स में ले जाना, जॉब के लिए कंपनीज को बुलाना, माय गॉड क्या चाहिए। और हम बार बार फिर भी कहते हैं, सुनी सुनाई बात पर नहीं, आकर देखना होगा। R&D कीजिए, सर्च कीजिए, वेबसाइट पर जाइए BCA और BBA और कॉलेज को, और उसमें आर्केड बिजनेस कॉलेज। जितने लोगों ने भी हमसे बातें की इधर के लगातार एपिसोड में, आप सबने सुना है, तो आप डायल कर सकते हैं नंबर 7520800 आर्केड बिजनेस कॉलेज का। हम आशीष आदर्श जी जो डायरेक्टर हैं इस संस्थान के, उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि माता पिता का कितना रोल होगा बच्चों के करियर डिसीजन में?
5: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों के सारे लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो वो करना चाहता है। देखिए, हमेशा मान के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज़्यादा बेहतर है। तो जो उसका फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें ज़रूर जाए, और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
1: धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चे को कोई भी नहीं समझ सकता। वो वही फील्ड चुनने दें जिसमें बचपन से उसे इंटरेस्ट उनको दिखाई दे रहा है। बहरहाल, चलने का वक्त हो गया, एक और उड़ान कार्यक्रम खत्म होना चाहता है। हम बातें जारी रखेंगे आने वाले एपिसोड में भी, लेकिन चलते चलते दो बातें स्टूडेंट से जरूर कहना चाहते हैं। फैंटेसी में नहीं जाइए, दिखावे में नहीं जाइए, है ना, सही से। जैसे एक बार आशीष जी ने भी कहा था कि हर इंस्टीट्यूशन अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता है, इसलिए सच्चाई देखनी चाहिए। दो तीन चीजें जरूर देखिएगा कि मान्यता स्थायी है या अस्थायी, इसके अलावा फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है, कितना आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रहा है, और गारंटी कहा, आधुनिकता के दौर में गारंटी की उम्मीद करना बिल्कुल नहीं। बहरहाल, जरूर बात कर लीजिएगा। ये नंबर है आर्किड बिजनेस कॉलेज का, 7520800800। तो बस आज का सफर यहीं तक, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
7: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे क्रमशः उर्मिला देवी,

और विभा सिन्हा को, साथ ही एक और कलाकार के गीत हम आप तक पहुंचाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले सुनिए उर्मिला देवी के स्वर में ये लोकगीत।

उर्मिला देवी के स्वर में सुन रहे थे आप ये देवी गीत। अब सुनिए संत कुमार झा के स्वर में ये कजरी।

0: आप सुन रहे थे विभा सिन्हा के स्वर में कजरी। आज के इस कार्यक्रम में आपने क्रमशः उर्मिला देवी, संत कुमार झा और विभा सिन्हा को सुना। लोक गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: भोर होते उठ जाओ कि एक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत अछि फूल, प्रकृति में घोराए लगत अछि ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानी बुनी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप

0: सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद

0: भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण बेस के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंटवार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों, 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।

0: 18 जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एग्जोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से

0: चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
1: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
0: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
1: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनामो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफिल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
0: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
0: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक

0: मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट हैं, तो उनका एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशियंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफई बी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और आईवीएफ तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैन्युपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म्स छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो

0: मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली. तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है और फिर स्लोली स्लोली पांचवे दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं. तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवे दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं.
1: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं.
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं. आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार. अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं. देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते. तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा. तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा. देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है. ये याद करने की जरूरत नहीं अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे.
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है. लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से.
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है. जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई. इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में. जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता. तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया. आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते. इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण. इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया. आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं. इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं.
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है. प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना. इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है. अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते. दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है. और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है. यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा. जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से एक स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं. तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है.

0: हमें अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी, जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी, एक साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं कर रहा, वो कैसे बदलेगा। सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी DC प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक DNA की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे

चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजेलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजेलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजेलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, तो इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी।

0: दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूरब अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। Subsequently, she underwent a rigorous training in khayal and tappa singing under the eminent exponent of the Gwalior Gharana, Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit, under the guidance of Padma Bhushan Srimati Shobha Gurtu. For nearly 14 years, she mastered the authentic Purab Ang Gayaki, performing Thumri, Dadra, Hori and Kajri, and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions. In addition to topping her MA and MPhil degrees in music from Delhi University with gold medals, Srimati Aditi Banerjee was specially honored by Padma Vibhushan Girija Devi during the Purabang Gayaki Utsav.
0: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी, जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं, बैरन रतिया कैसे आऊ।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aao?

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का आमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी मिश्र तिलक का आमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है।

0: इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashwani Delhi. Namaskar.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच CBI को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य

0: पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि हम विल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।